मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर मैं फ़ेरोज़ आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम भोर सुहानी में। वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक सुबह के 5:36 और 35 सेकेंड। महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा भोर सुहानी की, और भोर सुहानी में हम एक नई सुबह में कदम रख चुके हैं, एक नए दिन का आगाज कर चुके हैं। और अगर हम अपने स्टूडियो की खिड़की से देखें तो धूप हल्की हल्की सूरज निकलने लगी है, और बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत ये दृश्य है। इस वक्त जब आप इसको देखते हैं सुबह की रोशनी, तब ऐसा लगता है कि ये दिन बेहद प्यारा बहुत ही खूबसूरत है, और एक नई उमंग के साथ आप अपनी ज़िंदगी को आज के इस नए सफ़र पर लेकर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों कहते हैं कि ज़िंदगी एक ऐसा सफ़र है जिसमें कभी खुशियों की बारिश होती है तो कभी गमों के बादल छा जाते हैं, लेकिन जो लोग हर हाल में मुस्कुराना सीख लेते हैं वही ज़िंदगी की

असली फलसफे को समझ पाते हैं। कहते हैं मुस्कुराहट सिर्फ चेहरे की जीनत नहीं बल्कि दिल की ताकत भी होती है। ये न सिर्फ हमारे अपने हौसलों को बुलंद करती है बल्कि दूसरों के दिलों में भी उम्मीद की शमा रोशन करती है। जब हालात मुश्किल हों तब भी मुस्कुराकर आगे बढ़ना ही असली कामयाबी है। जिंदगी में हमें जिंदगी हर रोज़ एक नया मौका देती है कुछ सीखने का, कुछ बेहतर करने का और अपने ख्वाबों को नई परवाज देने का। इसलिए मायूसी को अपने करीब मत आने दीजिए और उम्मीद का दामन हमेशा थामे रखिए। आज का यह अगला बेहद खूबसूरत नगमा इसी पैगाम को अपने अल्फाज और सुरों में समेटे हुए हैं। गजल के जादूगर कि हर घड़ी को मुस्कुराकर जीना ही सबसे बड़ी नेमत है। तो आइए इसी बेहद खूबसूरत नगमे के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर भोर सुहानी की इस बहुत ही खूबसूरत महफिल में।

जगजीत सिंह साहब की आवाज़ में यह नगमा था फिल्म राही से। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर भोर सुहानी की इस दिलकश महफिल में मैं हूं आपके साथ फिरोज़। दोस्तों कहते हैं कि ज़िंदगी एक मुसलसल सफ़र है। एक सफ़र में कभी आसान राहें मिलती है तो कभी ऐसे मोड़ आते हैं जहां हर तरफ इम्तहान नज़र आते हैं, मगर कामयाब वही होते हैं जो हालात से घबराते नहीं बल्कि अपने हौसलों को और बुलंद कर लेते हैं। इंसान की असली पहचान उसकी दौलत या शोहरत से नहीं बल्कि उसके जज्बे, सब्र और हिम्मत से होती है। जब मंजिल दूर लगे, रास्ते वीरान दिखें और दुनिया साथ छोड़ती महसूस हो, तब अपने दिल की आवाज़ सुनिए, वो आपको आगे बढ़ते रहने का हुक्म देती है, वो आपको आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है। जिंदगी का पैगाम भी यही कि रुकना नहीं, थकना नहीं बल्कि अपने मकसद की तरफ बढ़ते रहना है। हर ठोकर एक सबक है, हर मुश्किल एक शिक्षा और हर संघर्ष एक नई कामयाबी की दस्तक। इन्हीं खूबसूरत जज्बों को अपने सुरों में समेटे हुए हैं अगला ये नगमा फकीरा फिल्म का। ये जोश और हौसले से भरपूर गीत अपनी दमदार आवाज़ से सजाया है महेंद्र कपूर साहब ने। तो आइए अपने दिल में उम्मीद की शमा रोशन करें, हिम्मत को अपना हमसफर बनाएं और हर रुकावट को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ने का हौसला जुटाएं। मंजिल उन्हीं के कदम चूमती हैं जो सफ़र की मुश्किलों से डरते नहीं। चलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने ख्वाबों की ताबीर तक पहुंचने का यकीन बनाए रखिए इस नगमे के साथ।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल और ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। ओडिशा में वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 68वें जन्मदिन के मौके पर उनसे मुलाकात करेंगे। इसके बाद दोनों नेता एक जनसभा को संबोधित करेंगे। ये जनसभा ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित की जा रही है। पश्चिम बंगाल की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस के समारोह में भागीदारी करेंगे। कोलकाता के रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और देश में निर्मित 3 युद्धपोत दुनागिरी, अग्रय और संशोधक राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री लगभग 590 करोड़ रुपए की लागत की रेल परियोजनाओं, हावड़ा में 300 बिस्तरों वाले नए रेलवे अस्पताल और पूर्वी मिदनापुर में एक रेल ओवर ब्रिज सहित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री 315 किलोमीटर से अधिक दूरी की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 49 ग्रामीण सड़क परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का लक्ष्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL की स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि तय फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी नागरिक का तय किए गए फुटपाथ पर चलने का मौलिक अधिकार प्राथमिक है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जाएगी। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि यह अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। एक दुखद मोटर दुर्घटना के क्षतिपूर्ति मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया। अपने 5 वर्षीय पुत्र को पिता द्वारा स्कूल ले जाते समय कथित दुर्घटना में बच्चे की मौत हो गई थी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्व के मौजूदा अस्थिर दौर में राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और विविध मतों के साथ संतुलन बनाए रखते हुए सभी

0: देशों के साथ बेहतर संबंधों पर बल दिया। कल शाम नई दिल्ली में भारत अमेरिका फोरम को संबोधित करते हुए डॉ. जयशंकर ने जटिलताओं और चुनौतियों का सामना करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में भारत और अमेरिका की साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रगति के साथ साथ भारत के हितों का भी विस्तार होगा और विविधता बढ़ेगी। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। श्री अग्रवाल वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय में सचिव हैं। वे वित्तीय कार्रवाई कार्यबल में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व कर चुके हैं तथा धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने पर अंकुश रखने वाली वैश्विक संस्था के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। 17-19 जून के दौरान कार्यबल की पूर्ण बैठक में यह निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए एक बड़ी विजय बताया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की बात की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। श्री गाइस थॉमसन को कार्यबल का अगला अध्यक्ष नियुक्त किए जाने का निर्णय हुआ है। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। मेजबान टीम 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुकी है। दोहा डायमंड लीग में भारत के जेवलिन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा कतर में चौथे स्थान पर रहे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Subhadra Ramachandran. Prime Minister Narendra Modi will be on a visit to Odisha and West Bengal from today. In Odisha, he will join President Draupadi Murmu at Pahadpur village in Mayurbhanj district on the occasion of the President's 68th birthday. The President and Prime Minister will visit Pahadpur village in Mayurbhanj district and offer prayers at sacred groves Santhali Jahera and Ho Jahera Skill Centre and Pahadpur School. Later, they will participate in a program at Rai Rangpur in Mayurbhanj district, marking the completion of 2 years of the Mohan Charan Majhi-led state government. During the program, they will inaugurate and lay foundation stone of various development projects worth over 47,000 crore rupees. During his two-day visit to West Bengal, Prime Minister Modi will participate in Paschim Bengal Divas, West Bengal Day, celebrations at Parakeshwar in Hooghly district today. He is also scheduled to launch, dedicate to the nation and lay the foundation stone of multiple development projects in West Bengal. Mr. Modi will release the 23rd installment of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, PM Kisan. Tomorrow, Prime Minister Modi will participate in the 12th International Yoga Day celebration in Kolkata at around 6:30 a.m. Senior Indian bureaucrat Vivek Agarwal has been selected as the next Vice President of the Financial Action Task Force, FATF, for the 2026-27 term. He will succeed Giles Thompson of the United Kingdom. Mr. Agarwal, currently serving as Secretary in the Ministry of Culture, earlier headed the Indian delegation to the FATF and played a key role in India's engagement with the global anti-money laundering and counter-terror financing watchdog. That decision was taken during the FATF plenary held from 17th to 19th of June. The Ministry of External Affairs has termed Mr. Agarwal's selection a major win for India. In a social media post, the ministry said the appointment reinforces India's commitment to combating terrorism, financing and illicit financial networks. It added that Mr. Agarwal's experience as former head of India's FATF delegation and former director of FIUIND will help advance the FATF's mandate of safeguarding financial integrity. External Affairs Minister Dr. H. Jayashankar has stressed that India must optimize relationships across geographies while pursuing its national interests, strategic autonomy and multipolarity in a turbulent world. Speaking at the India-US Forum 2026 in New Delhi last evening, Dr. Jaishankar spoke about the deepening India-US partnership across domains, even as both nations navigate its issues and complexities. He added that as India rises, its

0: हेलो हाय त्रिपाद, आप सुन रहे हैं रेनबो 101.9 और मैं हूँ आरजे श्री काव्या आपके साथ। और मेरे साथ हैं,
1: आरजे जयश्री।
0: हेलो, हाउ आर यू डूइंग? आज सैटरडे मॉर्निंग है एंड वी वर टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड रेफ्यूजी डे एंड देन वी वर टॉकिंग अबाउट हाउ प्रिविलेज्ड वी फील टू हैव अ होम। सो घर, एक्चुअली हम घर को घर क्यों कहते हैं? मतलब इज इट बिकॉज वहाँ की दीवारें सुंदर हैं या फर्नीचर अच्छा है या फिर एड्रेस परमानेंट है? नहीं, हम उसे घर इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ कोई हमारा वेट कर रहा होता है। मम्मी, पापा, भाई, बहन, पार्टनर, पेट, कोई तो हमारा इंतजार कर रहा होता है। और कितनी अजीब बात है ना, पूरा दिन दुनिया के साथ लड़ने के बाद बस एक इंसान का पूछ लेना आ गए और लगता है सब ठीक हो जाएगा। कभी कभी प्यार बड़े जेस्चर्स में नहीं होता, कभी कभी प्यार बस इस बात में होता है कि किसी को फर्क पड़ता है कि आप घर पहुंच गए या नहीं। और ऑनेस्टली यही बहुत बड़ी बात है।
1: प्यार होता है यार, घर घर प्यार होता है और क्या।
0: एग्जैक्टली, एंड दैट अप्लाइज टू इन एनी फॉर्म। नो जयश्री, जो भी हमारा घर पे इंतजार कर रहा है। माई फ्रेंड हैज अ वेरी ब्यूटिफुल पेट विथ हर और मैं जब भी देखती हूँ
1: मेरे
0: कि
1: तीन तीन है, सबको पता
0: ओ
1: है।
0: ओ वाह, दैट इज सो स्वीट, इट इज सो नाइस टू गो टू होम वेयर समबडी इज वेटिंग फॉर अस। और ऐसी बहुत सारी बातें होती रहेंगी और ऐसी ही बहुत बहुत मीठी मीठी बातें आज हम करेंगे। बट मीन वाइल, हियर इज अ ब्यूटिफुल ट्रैक जस्ट फॉर यू।
1: एक अच्छा सा हिंदी गाना हो जाए, हाँ, एक मजेदार
0: हाँ,
1: वाला।
0: ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स।

0: वेलकम बैक हैदराबाद। और अभी आपने सुना था वो लड़की है कहाँ, फ्रॉम दिल चाहता है। दिल चाहता है, दिल क्या क्या नहीं चाहता। दिल तो चाहता है कि आज तो बस मैं सो जाऊं और बस लेट उठूं, बट मुझे, मेरा मन कर रहा था कि मैं आके आप सबसे बात करूं, सो हियर आई एम। वैसे दिल और क्या क्या चाहता है जयश्री, आप बताइए आपका दिल क्या चाहता है।
1: मेरा दिल चाहता है कि जिनसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, मम्मी हो, पापा हो, या जिनसे मैं एक्चुअली बहुत प्यार करती हूँ, मेरा पार्टनर हो, कोई भी हो, उनके साथ वक्त बिताना वीकेंड पे, यही चाहता है। और खाना यार, मज़ेदार जायकेदार खाना। और दिल चाहता है कि मैं खूबसूरत गाने सुनूँ यहाँ पे रेनबो FM पे। और दिल

0: आता है कि मैं मुस्कुराऊं।
1: सुना आपने? सो मुस्कुराइए, अच्छा अच्छा खाना खाइए. मतलब खाने का तो अलग ही इमोशन होता है. वी ऑल रिलेट टू एवरीबडी विथ फूड. मतलब अगर क्या करना है वीकेंड, देन वील बी लाइक अरे वहाँ चले, एक नया प्लेस खुला, यहाँ खाते हैं वहाँ खाते हैं. सो यूजुअली हमारी सारी गैदरिंग्स ही फूड की अराउंड सेंटर होती है. कितने सारे इमोशंस जुड़े होते हैं फूड से.
0: एब्सोल्युटली। और खाने से ही रिश्ते आगे बढ़ते हैं, मेरे को लगता है। पता है, कोई घर आए तो हम पहले पूछते हैं, चाय पीना है, कुछ खाना है। पता नहीं, हम प्यार ना खाने से बहुत रिलेट करते हैं, और शायद इसीलिए कुछ भी खा लेते हैं कभी कभी।
1: बिल्कुल सही कहा. और इसी जोश में हम और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें करेंगे, पर तब तक के लिए ये इंटरेस्टिंग ट्रैक सिर्फ आपके लिए.

0: वेलकम बैक हैदराबाद। आप सुन रहे हैं रेनबो 101.9, रेनबो से होती है जिंदगी रंगीन। और अभी हम सुन रहे थे जश्न हैदराबाद के बारे में। इतना अच्छा फेस्टिवल है, बिरयानी चाय इन सब के बारे में सुन के मेरे मुंह में तो पानी आ गया है। जैसे हम अब बात कर रहे थे पहले भी कि फूड से हमारा अलग ही इमोशन होता है, बट ऑल्सो इट्स एट द सेम टाइम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हेल्दी खाए, हेल्दी रहे, एक हेल्दी लाइफ स्टाइल और रूटीन मेंटेन करें। आप क्या कहती हैं जयश्री?
1: ऑफ कोर्स, खाना जो भी हमारे पेट में जा रहा है देख परख के हमें खाना चाहिए। कुछ भी नहीं खा सकते हैं, क्योंकि बॉडी जो है ना, जैसे टेम्पल है, जैसे बहुत सारे हेल्थ प्रोफेशनल्स भी बोलते हैं ना, आजकल ग्राम पे मतलब ऑनलाइन पे भी बहुत बोलते हैं कि ये नहीं खाना। ये हेल्थ कॉन्शियस तो अभी हो गए हैं, मतलब जेनजी से शुरू होके हम सब हेल्थ कॉन्शियस हो गए, प्रोटीन देख रहे हैं, वो देख रहे हैं। लेकिन ये जो बारिश का मौसम है, आई नो बहुत क्रेविंग होती है, लेकिन बाहर का खाना ज़रा देख परख के, क्योंकि बैक्टीरिया ग्रो होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं ना ये सीज़न में।
0: एब्सोल्युटली, रेनी सीजन चल रहा है, वेदर तो वैसे भी है, जैसे आपने कहा बहुत खूबसूरत हो रखा है। लाइक फॉर एग्जाम्पल मुझे ले लो, एवरी मॉर्निंग आई वेक अप थिंकिंग माई बॉडी इज अ टेम्पल, आज आई विल फॉलो अ रूटीन, शाम को बारिश होती है एंड देयर आई एम हैविंग पानीपुरी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो जैसे जयश्री ने कहा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे हेल्दी, ईट हेल्दी, एंड येस वी हु डजेंट लव फूड, बट इंस्टेड ऑफ स्टेपिंग आउट, मे बी इफ यू हैव टाइम डू प्रेफर टू कुक इन साइड एंड एन्जॉय योर ब्यूटिफुल मील विथ योर लवली फैमिली। अलॉन्ग विथ दैट मुझे एक और बात याद आ रही है कि हम मिडल ऑफ द ईयर पे पहुंच चुके हैं। आज June 28th है, तो जून का भी आधा महीना खत्म हो चुका है। सो नाउ दैट वी आर इन द मिडल ऑफ द ईयर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर साल एटलीस्ट लाइक फॉर एवरी 6 months इट्स इम्पॉर्टेंट दैट वी टेक दैट स्टेप टूवर्ड्स आर हेल्थ एंड गेट आर एनुअल मेडिकल चेकअप डन, नॉट जस्ट फॉर द एल्डर्स इन द फैमिली बट ऑल्सो फॉर अस बिकॉज ऑफ द करेंट सर्कमस्टांसिस दैट वी आर लिविंग इन। व्हाट यू हैव टू से?
1: बहुत ही ज़रूरी है हमारे जद्दोजहद वाली ज़िंदगी में इतना हेल्थ के बारे में ध्यान रखना, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको लगता है कि सब कुछ चंगा है, मस्त चल रहा है, लेकिन आपके CBC मतलब कंप्लीट ब्लड टेस्ट, और आपके LFT KFT जो भी कराना है, बेसिक टेस्ट तो कराइए। मास्टर हेल्थ चेकअप अगर आप कराएंगे वंस इन 6 months, दैट इज़ अमेजिंग। बहुत सारे कॉर्पोरेट ऑफिसेज फ्री में भी रिएम्बर्समेंट के साथ करवाते हैं, लेकिन इफ़ यू नॉट वर्किंग इन कॉर्पोरेट, फिर भी आपको हेल्थ चेकअप कराना ही है, बहुत ज़रूरी है।
0: एब्सोल्युटली। और यहाँ पे हमारे व्हाट्सएप में हमारी एक श्रोता कह रहे हैं कि हेल्थ कम्स फर्स्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग अबाउट दिस। सो थैंक यू सो मच, बट इतने सारे व्हाट्सएप मैसेजेस जयश्री, ये है क्या?
1: हाँ जी, 9140-23-23-482 हमारा रेनबो का इंस्टेंट मैसेजिंग नंबर है, 9140-23-23-482। तो यहाँ पे आप ये नंबर सेव कर लें एज रेनबो FM, एंड यहाँ पे अगर आप मैसेज टाइप करके आपने भेजा, सेंड किया, तो उड़ उड़ के हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाएगा। और श्री काव्या

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो 101.9, रेनबो के साथ होती है लाइफ रंगीन। और अभी आपने सुना इज दिस लव, ये सॉन्ग ना, ऑल द दिस इज अ वेरी रोमांटिक सॉन्ग। इसमें एक लाइन सुनकर मुझे आज का इम्पॉर्टेंट दिन भी याद आ गया। इट वॉज टॉकिंग अबाउट, यू नो, वेन यू हैव अ गोल इन योर माइंड, ना आपको नींद आती है, ना आप कोई काम कर पाते, इट्स यू आर कम्प्लीटली इन टू दैट जोन। आई नो यू विल बी लाइक, अरे यार कितना अच्छा सॉन्ग बज रहा था, तुम क्या बात करने लग गई। बट आज एक्चुअली मौका ही ऐसा है दोस्तों, आज है नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। वैसे ये प्रोडक्टिविटी होती क्या है? प्रोडक्टिविटी इज ऑल अबाउट कि सी, हम सबके लाइफ में ना सिर्फ 24 आवर्स होते हैं एंड वी ऑल हैव द सेम टाइमलाइन, एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ वी यूज दैट टाइम। बेस्ड ऑन हम उस टाइम को कैसे यूज करते हैं, हम अपने लाइफ को डिजाइन करते हैं। और वैसे ही नेशनल प्रोडक्टिविटी डे यही कहता है कि उस 24 आवर्स को आप एफिशिएंटली कैसे यूज कर सकते हो। यू नो, अब्दुल कलाम जी ने भी एक बार यही बात की थी, ड्रीम्स आर नॉट वॉट यू सी इन योर स्लीप, ड्रीम्स आर वॉट दैट डजन लेट यू स्लीप। ऐसे गोल्स और ऐसे सपने जो हमें लाइफ में आगे बढ़ने को इतना मोटिवेट करे कि हम रेस्ट करने से इनकार कर दे। मतलब नॉट लाइक दैट, वर्क लाइफ बैलेंस सबकी लाइफ में इंपॉर्टेंट होता है, बट प्लानिंग योर डे एफिशिएंटली सो दैट यू कैन केटर टू ऑल योर विशेस एंड डिजायर। आप सुबह एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हो सकते हैं, शाम को एक म्यूजिशियन भी हो सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। सो दैट इज वॉट नेशनल प्रोडक्टिविटी

0: ऐसी धाकड़ है. दिस वॉज अ वंडरफुल सॉन्ग फ्रॉम द मूवी दंगल. वेलकम वेलकम बैक हैदराबाद. आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो 101.9, रेनबो के साथ लाइफ रंगीन. मैं हूँ आरजे श्री काव्या और मेरे साथ है आरजे.
1: जयश्री, खुद
0: हेलो एवरीवन. सो वी
1: का नाम बोलने में मस्त मजा आता है, पता है?
0: आई नो. सो हम बात कर रहे थे प्रोडक्टिविटी के बारे में इस गाने से पहले, और उसी चलते चलते मैंने प्ले किया धाकड़. सो धाकड़ इज अबाउट अ सॉन्ग वेयर विच टॉक्स अबाउट यू कैन बी एनी थिंग दैट यू वॉन्ट. दैट्स वट आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू से. एंड वी हैव वन सच पर्सन विद अस टूडे, एंड आई वॉज टॉकिंग टू हर जस्ट बिफोर द सॉन्ग, एंड शी वॉज टेलिंग मी ऑल द वंडरफुल थिंग्स दैट शी डज. जयश्री, सो आप यू टेल अस अबाउट प्रोडक्टिविटी. जयश्री, हाउ डू यू मैनेज सो मेनी थिंग्स एट वंस?
1: प्रोडक्टिविटी फर्स्टली ना, स्ट्रेस नहीं लेने का कि ये करने का है और समथिंग. टू डू लिस्ट बनाते हैं, उसके बाद आई मीन जो मैं करती हूँ, मैं बताती हूँ, तो मैं टू डू लिस्ट बनाती हूँ उस दिन के लिए और मैं फिनिश करती हूँ जो इजी टास्क है, जो 5 मिनट में हो जाते हैं, ईमेल भेजना है ऐसे कुछ. तो पहले वो टास्क करके फिर उसके बाद फोकस रख के जो टास्क करनी है उस पर फोकस करते हैं, है ना? 1 आवर फोकस टाइम होता है, देन आई टेक द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क. तो प्रोडक्टिविटी अगर नहीं भी हुआ उस दिन, ऐसे लगा कि मैंने कुछ काम किया ही नहीं, फिर भी स्ट्रेस नहीं लेने का, बिकॉज जितना आप स्ट्रेस लोगे ना तो उसका ऑपोजिट प्रोडक्टिविटी हो जाएगा. तो चिल करना है, एंजॉय करना है, और जब आप काम को एंजॉय करते हैं, काम काम नहीं लगता.
0: एब्सोल्युटली, दैट इज सो वेल सेड. कि एक तो ऑल दीज टास्क जो हम कर रहे हैं, ये हम करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए स्ट्रेस लेने का क्या फ़ायदा. इंस्टेड वी शुड जस्ट डील विद इट एज इट कम्स टू अस. एंड जैसे आपने कहा, इफ़ यू डू लाइक द मोस्ट चैलेंजिंग टास्क इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द डे, वी आर रेडी फॉर द एंटायर डे. वील बी लाइक ब्रिंग इट ऑन, मैं कर लूंगी टाइप्स.
1: एब्सोल्युटली. और खाना, फूड, स्लीप बहुत ज़रूरी है. नींद को सैक्रिफाइस करके प्रोडक्टिव बनना है वो ये नहीं होगा. एब्सोल्युटली, तुम्हें खाना खाना है, अच्छे से हेल्दी खाना, उसके बाद अच्छे से 6 से 8 घंटे का नींद, एंड देन द डे इज़ योर्स.
0: एब्सोल्युटली, दैट इज़ वेरी वेल सेड जयश्री. सो ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें होती रहेंगी, बट मीन वाइल जयश्री, आई एम क्यूरियस, कैन यू प्लीज टेल अस कि व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट, व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन टुडे शो?
1: ऑफकोर्स, 11:30 को हमारा स्टम्प रिले होने वाला है. न्यू दिल्ली से हम सब सुनेंगे स्टम्प रिले, जो आकाशवाणी और BBC इंटरनेशनल के कोलैबोरेशन के साथ होने वाला है. एंड क्रिकेट की दुनिया के बारे में हर वो चीज़ स्टम्प में डिस्कस होगा. इंटरव्यूज होंगे, प्लेयर्स के बारे में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन, एंड क्रिकेट वर्ल्ड में एक झलक, आई वुड से. सो 10:30 to 10:48 हमारा स्टम्प रिले होगा, बस कुछ ही देर में. स्टे ट्यून्ड.
0: अमेजिंग. और इसी क्रिकेट के जोश और इसी क्रिकेट के माहौल को जारी रखते हुए आपके लिए एक वंडरफुल सॉन्ग आ रहा है. स्टे ट्यून्ड.

0: वेलकम बैक हैदराबाद। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो 101.9 रेनबो से रेनबो के साथ लाइफ रंगीन। आपने अभी अभी बहुत ही अच्छा स्टम्प रिले सुना और उसके बाद हमने अच्छे अच्छे गाने बजाए एंड इट्स टाइम फॉर अस टू मीट अगेन। तो मी एंड जयश्री वर टॉकिंग अबाउट द इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स और इंटरेस्टिंग हैपनिंग्स इन द वर्ल्ड दैट इफेक्ट अस और दैट मीन अ लॉट टू अस। एंड व्हेन शी आस्क्ड व्हाट इज दैट वन थिंग दैट अफेक्ट्स यू अ लॉट, देन आई टोल्ड हर कि जयश्री फॉर मी काइंडनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट जस्ट फॉर मी। आई फील एज ह्यूमन्स इट इज़ आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव एंड काइंडनेस कम्स फर्स्ट। बट देन शी वॉज टॉकिंग अबाउट देन वॉट डू यू हैव टू थिंक अबाउट सेटिंग बाउंड्रीज। देन आई टोल्ड हर कि येस ऑफकोर्स काइंडनेस इज इम्पॉर्टेंट, बट इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू नो वेयर टू ड्रॉ द लाइन, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी कैन नॉट जस्ट पोर इन टू अ कम्प्लीट एम्प्टी कप। इट शुड बी टू फुल कप्स पोरिंग इन टू ईच अदर। दैट्स हाउ यू कैन ऑलवेज स्टे हैप्पी एंड कीप अदर्स ऑल्सो हैप्पी। वॉट डू वॉन्ट टू से अबाउट दिस जयश्री?
1: फ़ायदा बहुत उठाते हैं लोग जब आप में अच्छाई देखते हैं. सब हर कोई नहीं, लेकिन कई कई ऐसे इंसान होते हैं जो देखते हैं कि अरे यार ये तो इतना अच्छा इंसान है, इससे मैं फ़ायदा उठाता हूँ. जैसे देखो ना, दोस्ती बहुत तगड़ा हो जाता है एंड उसके बाद आपका इतना अच्छा दोस्त सडनली आपसे आपकी गाड़ी मांगेगा या पैसे मांगेगा या कुछ, और आप दे भी दोगे फिर भी ऐसा कुछ कर जाएगा जो आपने सोचा भी नहीं हो, और आप एक डिसीजन ले लोगे कि यार कभी मैं इसको ट्रस्ट नहीं करूंगा. तो देख परख के बाउंड्रीज, मतलब ये जो बाउंड्रीज है, ये जो सरहदें हैं जो आपको साइकोलॉजी में भी बताते हैं, आपके काउंसलर्स भी बताते हैं कि ये बाउंड्रीज हमेशा जरूरी है. इतना मतलब कहते हैं ना कि थोड़ा छूट दिए तो सर पे चढ़ गए काइंड ऑफ थिंग, वो नहीं होना चाहिए.
0: बिल्कुल सही बात की आपने। और ये प्रैक्टिस कैसे किया जाए? फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर समवन जो स्ट्रगल कर रहा है बाउंड्रीज में सेट कैसे करूँ, मैं कैसे लोगों को मना करूँ, मैं इसके लिए बस एक ही चीज़ कहूँगी, मेरे दोस्त, इवन आई वॉज देयर, आई हैव हैड अ वेरी लॉन्ग जर्नी सेटिंग माई ओन बाउंड्रीज। एंड वॉट हैव आई लर्न इन दिस प्रोसेस इज दैट इफ यू रिस्पेक्ट योर सेल्फ इनफ, आपके लिए हमेशा योर सेल्फ शुड कम फर्स्ट। और अगर आप अपने आप को रिस्पेक्ट करना शुरू करोगे ना, देन यू विल नो वेयर टू वॉक अवे एंड वेन टू ड्रॉ द लाइन एंड स्टेप बैक, सेइंग नहीं बस हो गया, दिस इज इट, सी आई एम देयर फॉर यू, आई विल लिसन टू यू, बट अभी इट्स टाइम फॉर मी टू केटर टू माई ओन सेल्फ एंड माई ओन इमोशनल नीड्स। सो येस, काइंडनेस इज इम्पॉर्टेंट, बट हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए, हेल्दी बॉन्ड्स

मेंटेन करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू प्रायोरिटाइज योर ओन सेल्फ सो दैट अगर आप अपनी इज्जत करोगे तो आपके चारों ओर लोग भी आपकी इज्जत करेंगे. सो दैट इज इट अबाउट सेटिंग बाउंड्रीज एंड देयर सो मच मोर टू टॉक अबाउट. हमारी बातचीत होती रहेगी. मीनवाइल ये इंटरेस्टिंग ट्रैक सिर्फ आपके लिए.

पहाड़पुर पहुंची। ओडिशा के राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और स्थानीय लोगों ने राष्ट्रपति के आगमन पर उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति आज अपना 68वां जन्मदिन मना रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज पहाड़पुर गांव पहुंचेंगे। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने गांव का दौरा करेंगी। वे पवित्र संथाली जहेरा हो जहेरा उपवनों में पूजा अर्चना करेंगे, साथ ही कौशल विकास केंद्र और पहाड़पुर स्कूल का दौरा भी करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक बड़े जनसभा कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे ऊर्जा, अवसंरचना, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सिंचाई सहित विभिन्न क्षेत्रों में 47,000 करोड़ रूपये से अधिक के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। वे हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। गृहमंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न

0: विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे इचलकरंजी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा एक सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैरकानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA कल होने वाली नीट UG पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित करेगा। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए ये मॉक ड्रिल की जा रही है। एजेंसी ने बताया कि कल होने वाली पुनर्परीक्षा के लिए उसकी तैयारी पुख्ता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज पश्चिम बंगाल दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में उन्होंने कहा कि ये दिन पश्चिम बंगाल के भारत का अभिन्न अंग बने रहने के संकल्प और आकांक्षाओं का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 1947 में इसी दिन एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के एक अहम हिस्से के रूप में पश्चिम बंगाल राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया था। विदेश मंत्रालय की तथ्य जांच इकाई ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन दावों को खारिज किया है जिनमें कहा गया था कि कुछ मीम्स को लेकर विरोध दर्ज कराने के लिए चीन ने भारत के राजदूत को तलब किया था। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि ये दावा पूरी तरह से झूठा और निराधार है। अमेरिका और ईरान के बीच अगले दौर की वार्ता के लिए अमरीकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। ये वार्ता कल शुरू होनी थी लेकिन लेबनान में इसराइल और हिजबुल्ला के बीच जारी संघर्ष के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। बाद में दोनों पक्षों के बीच युद्ध विराम पर सहमति बनी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमरीका और ईरान के बीच होने वाली इस नई वार्ता में संभावित परमाणु समझौते पर चर्चा होने की उम्मीद है। विश्व भर में कल 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। संस्कृति मंत्रालय भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और योग परंपराओं को दर्शाते हुए देश भर में 100 स्थानों पर विशेष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के MA चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. President Draupadi Murmu reached at her village Paharpur in Odisha's Mayurbhanj district today to celebrate her 68th birthday amid a warm welcome from local residents. Odisha Governor Haribabu Kambhambati and Chief Minister Mohan Charan Manji received the President on her arrival. Prime Minister Narendra Modi has arrived at Paharpur. The President will accompany the Prime Minister on a visit to her village and the two leaders will offer prayers at the sacred Santali Jahera and Ho Jahera groves. Later, the President and the Prime Minister will participate in a major public program at Rai Rangpur, marking 2 years of the Odisha government. Development projects worth over 47,000 crore rupees will be inaugurated and foundation stones laid across sectors including energy, infrastructure, healthcare, education and irrigation. President Draupadi Murmu, Vice President CP Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have extended greetings to the people of West Bengal on the occasion of Paschim Bongo Divas today. In a social media post, she said that the day marks a significant milestone in the state's history, reflecting the aspirations and resolve that ensured West Bengal remained an integral part of India. The Vice President said that on this day in 1947, a historic decision paved the way for the creation of West Bengal as an integral part of India. He said that West Bengal occupies a special place in the country's civilizational and national life. In a social media post, Mr. Modi said, that this day celebrates a state that has made immense contribution

0: ईरानी चाय,
1: बन मस्का,
0: हैदराबादी बिरयानी,
1: टंगड़ी कबाब,
0: कुर्बानी का मीठा,
1: शहदूद मलाई।
0: हैदराबाद इज अ ग्रैंड बफे
1: एंड एवरी डिश हैज अ स्टोरी वेटिंग टू बी टोल्ड।
0: एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई जश्ने हैदराबाद इज योर आफ्टरनून ट्रीट
1: फ्रॉम 2 to 3 PM एवरी डे ऑन FM रेनबो 101.9।
0: इट्स नॉट जस्ट फूड,
1: इट्स कल्चर, हिस्ट्री एंड फ्लेवर रोल्ड इनटू वन।
0: जश्ने हैदराबाद।

0: हैदराबाद बोले तो क्या याद आता? अरे ऐसे ची याद आता ऐसे कि जाने दो जाने दो जान दो जी। अरे पता है काव्या, जब मैं सुनती थी कोई बोलता है जान दो, तो मैं सोची एक्चुअली जान देते हैं। जाने दो मतलब ये लाइट लो जाने दो, ये वाले शब्द जो है ना हमारे हैदराबादी हिंदी में जब बोलते हैं लोग, मतलब इतना अपनापन लगता है। आपको हैदराबादी डेक्कनी जैसे बोलते हैं उर्दू, डेक्कनी हिंदी, ये इसमें लाइक कौन सा शब्द आपको पसंद है या कौन सा वो अल्फाज जो आपको बहुत अच्छा लगता है?
1: जैसे

0: आपने कहा अरे जान दो, दैट इज एक्चुअली मेरा भी बहुत ही कॉमन टर्म है, इतना कि इवन मैं घर पे भी, मतलब हमारा मदर टंग कुछ और है, मैं घर पे भी यही बोलती रहती, अरे जान दो ना यार, लाइट लो ना यार, इतना अच्छा लगता है ना, द मोमेंट यू से दैट सडनली यू आर इन अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन, अरे जान दो यार,
1: जान दो
0: मतलब
1: जी, लाइट लो, क्या है, क्या इतना परेशान कई को हो रही
0: कई को
1: तुम
0: इतना लोड ले रहे हो आप
1: कई को इतना लोड ट्रू लाइक यू नो, जब भाषा में ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दिल को हल्का करते हैं,
0: आई नो
1: और यहाँ पे हम दिल को हल्का करने के म्यूजिक जो प्ले कर रहे हैं, चुनिंदा गाने लाए हैं श्री काव्या जी हमारे लिए यहाँ पे, और
0: एब्सोल्युटली
1: अगला गाना कौन सा प्ले करने वाले हैं आप?
0: हमारा अगला गाना है तेरे संग यारा,
1: वाह रुस्तम फिल्म, क्या फिल्म है, अक्षय कुमार एंड इलियाना,
0: इलियाना डिक्रूज,
1: ब्यूटीफुल इंडीड। चलिए गाना सुनाएंगे।
0: यस

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो 101.9। रेनबो के साथ है लाइफ रंगीन, बातों की जुगलबंदी, गानों का सिलसिला जारी है। मैं हूँ आरजे जयश्री और मेरे साथ है आरजे
1: श्री काव्या।
0: खूबसूरत। दो लोग आपके साथ यहाँ पे हैं और खूबसूरती की बात यह है कि अगले कुछ मिनटों में यानी 1 बजे आप और हम रूबरू होने वाले हैं। अभी तक तो इंस्टेंट मैसेजेस यहाँ पे व्हाट्सएप पर आप मैसेजेस भेजते ही जा रहे थे और हम पढ़ते ही जा रहे हैं। अभी डायरेक्ट फोन कॉल, हम और आप रूबरू हो सकते हैं कॉल पे। यानी एक तरफा प्यार, मतलब एक तरफा बातें नहीं होंगी, दो तरफा बातें होंगी, तो आप भी बिल्कुल कॉल कर सकते हैं। एंड यस, कॉल करने के नंबर्स वो सब बाद में बताऊंगी, लेकिन अभी बहुत ही खूबसूरत मैसेज आया है शांति नगर बसवंत जी ने भेजा है शांति नगर से। काव्या जी को नमस्ते। काव्या जी आप ही पढ़िए बसवंत जी का मैसेज।
1: नमस्ते नमस्ते बसवंत जी, वे आपको भी नमस्ते कह रहे हैं
0: नमस्कार।
1: वैसे। सो आज उन्होंने लिखा है कि व्हाट यू से, ओके हम इन
0: रेनबो के लिसनर्स को नमस्ते और एक न्यू आरजे को नमस्ते। सॉरी आई डोंट नो हर नेम, लेकिन बसवंत जी ने आपका भी नाम लिख लिया। और व्हाट यू सेइंग और टॉकिंग अबाउट फूड एंड हेल्थ, इट्स गुड। हाउ मेनी आर टेकिंग केयर एंड लव आर सेल्स। आई सी रोड साइड ईटर्स, ड्रेनेज वाटर्स फ्लोइंग, ही इज मेकिंग चाट एक्सेट्रा। नो वन इज बॉदर्ड ईटिंग इन प्लास्टिक प्लेट्स, वेरी डेंजरस। एंड बट वी आर ईटिंग लाइक सो मेनी थिंग्स, दस नो फुल स्टॉप, एंड दैट इज द इश्यू। थैंक यू रेनबो FM फॉर द अवेयरनेस अबाउट हेल्थ। बसवंत जी सही कहा। काव्या, वेन हॉट फूड इज सर्व्ड ऑन अ पेपर प्लेट, सिंगल यूज प्लास्टिक डिस्पोजेबल प्लेट, उसके ऊपर जो परनी होती है, उसके ऊपर जो प्लास्टिक होता है, वो भी खाने में मिल जाता है, क्योंकि वो गर्म
1: हाँ
0: गर्मी से, राइट? एंड वही हम खा लेते हैं,
1: यस
0: सोचते नहीं हैं। एंड उसके अलावा एनवायरनमेंट का भी हेल्थ रख के, हमारा भी हेल्थ का ध्यान रखे, एनवायरनमेंट के एस्पेक्ट में भी सिंगल यूज प्लास्टिक कितना यूज होता है। मैं और मेरी फ्रेंड हमेशा एक, आई मीन हंस भी लेते हैं लोग, लेकिन हम एक स्पून, एक स्टील का स्ट्रॉ, वी कैरी इट विद अस, क्योंकि हम कटलरी वेस्ट नहीं करना चाहते, हमारे बैग में हमेशा होता है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें भी, यू नो, वी शुड इम्प्लीमेंट।
1: दैट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव जयश्री। इनफैक्ट आजकल तो ऐसा ट्रेंड भी चल रहा है ना दैट वी हैव दीज कोलैप्सिबल कप्स, सो जो स्टील
0: करेक्ट,
1: कप्स होती हैं वो
0: चाय पीने के लिए।
1: कोलैप्सिबल, या सो नॉट फॉर चाय एंड देन जैसे आपने कहा अगर पानी पूरी, अगर हमें कुछ भी खाना है, वॉट एवर वी वॉन्ट टू ईट आउटसाइड, वो कप इट हैज 3 शेप्स, तो वो ग्लास बन जाता है, कप बन जाता है, एंड इट्स ऑलवेज नाइस टू कैरी ऑल ऑफ दिस। इनफैक्ट मेरे आजकल मैंने रिसेंटली देखा कि कॉर्पोरेट्स में भी ऐसे सस्टेनेबिलिटी मूव चल रहे हैं जहाँ पे दे आर लाइक येस वी डू हैव डिस्पोजेबल कप्स एंड एवरी थिंग।
0: हाल ही में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जून 5
1: था
0: को।
1: एग्जैक्टली, बट इट्स ऑलवेज नाइस टू कैरी योर ओन मग टू ऑफिस, जो बहुत ही कॉमन चीज जो ऑफिस में होती है दैट इज कॉफी और चाय,
0: ट्रू,
1: दैट्स वेयर वी स्पेंड मोस्ट ऑफ आर टाइम और सम ऑफ आर टाइम वाइल वर्किंग। और वहां पर भी लाइक ऑल वी हैव टू डू इज अगर हम एक दिन वो मग ले जाकर वहां डेस्क पे रख दे, नेक्स्ट डे से कॉन्शियसली विल बी मेकिंग दोज चॉइसेस टू पिक कॉफी और चाय फ्रॉम द कप, एंड जस्ट इमेजिन हाउ मेनी अमाउंट्स ऑफ डिस्पोजेबल कप्स वी विल बी सेविंग एंड हाउ मच वेस्टेज वी विल बी सेविंग।
0: ट्रू। और जैसे बसवंत जी यहाँ पे बोल रहे हैं अबाउट हेल्दी ईटिंग, इसके बारे में हम बात करते हैं एक गाने के बाद। सो स्टे ट्यून्ड, वी विल बी राइट बैक। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो 101.9, रेनबो के साथ।
2: నేను ఎం శ్రీనివాస్, డిస్ట్రిక్ట్ చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫీసర్, హైదరాబాద్. పిల్లల పరంగా మిస్సింగ్ చిల్డ్రన్స్ కానీ 0 to 18 ఇయర్స్ ఎటువంటి పిల్లలు మీకు కనపడినట్లయితే మీరు 1098కు కాల్ చేయండి. 24/7 అవైలబుల్ ఉంటుంది పిల్లల పరిరక్షణకై హైదరాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ అన్నట్టు.

0: आकाशवाणी रेनबो एफएम 101.9 रेनबो एड्स कलर्स टू योर लाइफ एंड यस वी आर हियर टुडे. इतना खूबसूरत समा, इतना हसी मौसम और आप और मैं, बात की जुगलबंदी, गानों का सिलसिला एंड मेरे साथ, मैं अकेली नहीं हूँ मेरे स्टूडियो में, मेरा स्टूडियो खिलखिला रहा है और मेरे साथ है एक और हमारे को आरजे, उनका नाम है
1: श्री काव्या.
0: श्री काव्या, नाम तो बिल्कुल याद रखना ही होगा. तो अभी हमारा सिलसिला शुरू होगा जो है हेलो रेनबो. हेलो रेनबो है क्या? हेलो रेनबो हमारा लाइव फोन इन प्रोग्राम है. भाई रेडियो किस लिए जाना जाता है? सिर्फ एक तरफा आवाज़, इन्फॉर्मेशन, न्यूज़, गाने सब कुछ सुनते हैं, लेकिन ये एक सेगमेंट यानी 1 बजे से 2 बजे तक आपकी बातें होंगी, आपके फेवरेट गाने हम प्ले करेंगे और फ़ोन कॉल्स आपके, बातें आपकी और राय भी आपका. राय किस पे काव्या, क्या होने वाला है शो में?
1: तो जयश्री, इस हफ्ते ना स्कूल्स एंड कॉलेजेस फिर से रीओपन हो चुके हैं. एवरीबडी इज बैक टू स्कूल, एवरीबडी इज बैक इन देयर ज़ोन्स. तो मैं सोच रही थी कि यार कम से कम स्कूल्स एंड कॉलेजेस में छुट्टियां तो मिलती हैं हमको, तो अब समर हॉलीडेज भी नहीं मिलते, हम वो फेस भी क्रॉस हो चुके हैं. और मैं उन्हीं चीज़ों के बारे में सोच रही थी कि कितनी खूबसूरत होती थी वो हॉलीडेज.
0: टॉपिक टॉपिक टॉपिक हम 1 बजे के बाद बताएंगे.
1: हाँ,
0: तो शो में क्या होगा?
1: शो में तो बहुत सारी बातें होंगी. हमारे ब्यूटीफुल से लिसनर्स हमें कॉल करेंगे, वो अपनी बहुत सारी मेमोरीज हमारे साथ शेयर करेंगे.
0: एक शिकायत भी

0: करते हैं, कहते हैं कि आपके फोन लाइंस मिलते ही नहीं, हमारे पास तीन तीन फोन लाइंस तो है ही।
1: और एक कॉल करके आप डिसअपॉइंट मत हो जाइए, कॉल करते रहिए एंड डेफिनेटली विल पिक योर कॉल.
0: बिल्कुल, सो स्टे ट्यून्ड, एक खूबसूरत गाना एंड विल बी राइट बैक विद आवर हेलो रेनबो. दिस इज आकाशवाणी FM रेनबो 101.9, रेनबो एड्स कलर्स टू योर लाइफ.

0: समय चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। वक्त की पाबंदी बिल्कुल नहीं होगी 1 घंटे तक। अभी स्टूडियो क्लॉक में बज चुके हैं 101, यानी हमारा FM का फ्रीक्वेंसी भी 101। यानी 1 बजे हम क्या करते हैं, हम हेलो रेनबो की शुरुआत करते हैं, और हेलो रेनबो में स्वागत है।
1: वेलकम वेलकम, हेलो रेनबो में आज आपका स्वागत है और हमें आप सभी के कॉल्स का इंतजार है। वैसे आज हम बात किस चीज के बारे में करने वाले हैं? हम अभी बात कर रहे थे समर हॉलीडेज के बारे में एंड हाउ वी हैव क्रॉस दैट फेज। बट तो क्या हुआ अगर हमारी लाइफ की फेजेस बदल गई हो, मेमोरीज तो आज भी फ्रेश होंगी ना। सो हमें कॉल कीजिए और हमें बताइए आपके समर हॉलीडेज का वो फेवरेट मेमोरी क्या था। अगर कोई मुझसे पूछे, मैं कहूंगी नानी के घर जाना और उनके हाथ के बने गर्मा गर्म खाना, उनके हाथ से बना हुआ गर्मा गर्म खाना खाना, दैट वॉज माई फेवरेट मेमोरी। आपका क्या मेमोरी था समर हॉलीडेज को लेकर? तो कॉल कीजिए और हमें बताइए 0402323 0030, 0402323 4821, 0402970 4715। डोंट वेट अप कॉलर्स और व्हाट्सएप अस, और हम आप सभी के कॉल्स का इंतजार कर रहे हैं।
0: यस, अगर आप मशरूफ हैं, कुछ लंच कर रहे हैं और बहुत बिजी है, तो बिल्कुल व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। 9140232342 पर व्हाट्सएप कीजिए। एंड राइट नाउ हमारा पहला कॉलर रेडी है। काव्या,
1: ओह माय गॉड,
0: लेट्स सी हु इज ऑन द लाइन। ऑल राइट, हेलो रेनबो।
2: हेलो, गुड आफ्टरनून।

0: मैडम
1: गुड आफ्टरनून।
0: भाई
1: आप
0: रेडियो शौकीन सर्वर अलहमदुल्ला
1: सर्वर अली साहब कैसे हैं?
0: अल्लाह करम है। आप ठीक है मैडम?
1: मैं मस्त
0: आप
1: हूँ। मेरे साथ आरजे काव्या है एंड
0: जी जी
1: बस हो रहा है। और आपके मैसेजेस भी मैंने देखे हैं, बहुत बहुत प्यारे हैं।
0: हाँ वही है, अपन पुराने लाइफ स्टाइल को नहीं छोड़ सकते मैडम।
1: नहीं छोड़ना भी है।
0: क्यों बोले तो उसमें जो मजा है किसी में नहीं है। और
1: हाँ
0: जैसा आप समर हॉलीडेज की बात करें, अभी भी मैं एंजॉय करता हूँ
1: जी
0: जाके। अभी टांडूर के आगे मलकापुर बोल के गाँव है,
1: ओके okay।
0: वहाँ पे स्विमिंग करके जबरदस्त टेप रिकॉर्ड गानों के साथ फुल एंजॉय के साथ।
1: अरे
0: इसका मजा
1: सुपर,
0: ही अलग होता,
1: वेरी नाइस। तो गानों
0: स्विमिंग
1: के साथ
0: करे।
1: आप आपको गाने ज्यादा याद है समर
0: बस
1: हॉलीडेज के टाइम पे?
0: बस गाने गाने गाने और रेडियो, बस वो तो अपने हम पल पर बचे हुए अपने दिल दिमाग में। वो सुबह से
1: सुपर,
0: जो शुरुआत होती रेडियो 6 बजे से तो चलते रहता अपना। और साथ भी कहीं गया, मैं कहीं भी गया भी तो, और आज भी मैं करंट से नहीं सुनता, चल से सुनता रेडियो बैटरी
1: अच्छा।
0: से। हाँ उससे उससे सुनने का मजा ही अलग है। ये करंट से सुनने से क्या है, डिस्टरबेंस आता मैडम।
1: जी जी जी जी
0: ये चल से क्या है, साफ नीट आवाज आती है, अच्छा मजा आता जबरदस्त। ये इसमें क्या है, डिस्टरबेंस ये वो करंट का, पंखे हो ट्यूबलाइट हो चलता ना तो सही
1: हाँ
0: नहीं आते रेडियो।
1: आपको बिना डिस्टरबेंस के आपको गाना सुनना है,
0: हाँ
1: वो
0: बस
1: है
0: बस, तुम बोले तो
1: प्रायोरिटी।
0: साथ रहने में पॉकेट रेडियो साथ रहता मेरे हमेशा,
1: हाँ
0: पॉकेट रेडियो जेब में डाल लेके सुनते रहता हूँ,
1: कितने
0: जिंदगी का
1: रेडियोज़ है
0: मजा
1: आपके
0: ले।
1: पास सरली साहब, कभी गिनती किया आपने?
0: मेरे जी हाँ, मैं गिनती तो नहीं किया, कम से कम ये वाल रेडियो, अहम खास रेडियो से जो वाल रेडियो से वो 13 है मेरे पास। और जो ट्रांसिस्टर, जो ओल्ड ट्रांसिस्टर वो है नेशनली को, मर्फी बुश और जाइनेट के, ये कम अज कम वो 93 90 95 है वो।
1: जी,
0: और ये टेप रिकॉर्ड 2 in 1 बोले तो वो करीब है 60 के करीब है वो,
1: 60,
0: 60 65 है वो टेप
1: अरे
0: रिकॉर्डर।
1: बाप रे, पूरा
0: और
1: घर।
0: ये
1: हाँ
0: एफएम वाले बोले तो एक 13 14 है बस। ये एफएम वाले जो आईसी वाले आजकल आते ना, ये
1: जी जी नया
0: एफएम के
1: टेक्नोलॉजी,
0: आईसी वाले वो सिर्फ 13 14 ही है। पुराने
1: वाह वाह वाह।
0: बोले तो वो बहुत है, ट्रांसिस्टर पहले ट्रांसिस्टर ही बहुत चलते थे ना मैडम,
1: हाँ पहले
0: उसका मजा।
1: ट्रांसिस्टर्स थे
0: हाँ वो 2 बैंड वाले वही
1: ऑलमोस्ट आई
0: सुन।
1: थिंक 40 साल पहले।
0: हाँ अब ये एफएम तो 90 में आया अपने पास इंडिया में, एफएम तो दुनिया में आगे 80 75 में एफएम चालू हो गया था, लेकिन अपने पास 15 साल बाद में आया 90 में,
1: जी
0: इसके
1: जी
0: बाद से एफएम चालू हो गया बहुत, पूरा सब एफएम पे ही हो गया अब। ये वाल
1: पूरा।
0: रेडियो जो होता लकड़ी के रेडियो में से जो आवाज आती ना मैडम, उसका मजा बहुत अच्छा रहता। वाल जो
1: अच्छा,
0: गर्म हो
1: मतलब
0: गए
1: आप
0: जैसा,
1: बोल रहे हैं कि जो बिल्ट है रेडियो का, उससे वॉइस क्वालिटी भी चेंज होती है, साउंड क्वालिटी भी।
0: हाँ साउंड क्वालिटी चेंज होती है उससे। हाँ क्यों बोले तो ये डिस्टरबेंस नहीं रहता, चल से साइलेंट नीट आवाज आती, अच्छा
1: जी
0: क्लियर
1: जी
0: आता उसमें भी। अब देखिए जैसा आप जितने भी आरजे है उनकी आवाज मुख्तलिफ अलग अलग है, कैसा
1: हाँ अलग
0: भी
1: अलग
0: पहचान ले सकते हैं ये आरजे है, इनो निशा मैडम है, इनो जयश्री मैडम है, इनो है बोल
1: जी।
0: के ऐसा। तो रेडियो में भी हर रेडियो की क्वालिटी अलग अलग होती, नेशनल लीको की अलग होती, नेशनल पेनासोनिक की अलग होती,
1: अगर
0: बुश की
1: आप
0: अलग होती।
1: हेडफोन्स लगाए तब भी अलग आती ना वॉइस?
0: मैं आज तक तो नहीं लगाया मैडम हेडफोन,
1: अच्छा ओके।
0: हेडफोन नहीं लगाया मैं और इस्तेमाल तो नहीं करा, ऐसे ही डायरेक्ट ऐसे ही लगा के वो। अभी ये मैं ये 2014 में अपने प्राइम मिनिस्टर साहब जब बोले थे ना मन की बात से, जब से शुरू आना तो मैंने जब से रेडियो कलेक्ट करना शुरू करा मैं, 10 साल पहले 12 साल पहले से। इससे
1: ओके।
0: पहले मैं कहने तीन चार थे और हमारा खानदानी रेडियो तो है जेक पुराने वाला वाल रेडियो वो।
1: तो उनकी
0: और हम
1: बातें आपको इंस्पायर किए
0: किनके
1: एंड
0: जी हाँ जी हाँ, अरे बहुत इस पर मैं बराबर 11 बजे सुनता हूँ अभी ये, फिर 25 तारीख को फिर होता ना मन
1: जी,
0: की
1: माननीय
0: बात 11 बजे
1: प्रधानमंत्री जी,
0: आकाशवाणी
1: मन की बात
0: आकाशवाणी
1: से बहुत बहुत सारे लोग प्रभावित हुए हैं, और
0: जी
1: शायद
0: हाँ।
1: अभी हम इंटरनेशनल योगा डे के बारे में भी जानेंगे।
0: और एक चीज ये क्या हुआ मैडम, ये प्राइम मिनिस्टर साहब जब से रेडियो का बोले ना, ने तो रेडियो का रिझान तकरीबन खत्म ही हो गया था। अब ये क्या कर रहे लोग हर घर में, अरे भाई एक रेडियो रहना बोल के चाह रहे, पसंद कर रहे लोग अब, अरे
1: जी
0: हम
1: सर
0: घर में
1: वेली
0: एक रेडियो
1: साहब।
0: रहना भाई बोल के, ऐसा वैल्यू बहुत बढ़ गई रेडियो की। जो चीज कम होती ना मैडम उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती, ऐसा है। जो चीज ज्यादा रहती उसकी कदर नहीं रहती।
1: जी
0: आपका
1: जी
0: वक्त ज्यादा ले रहा हूँ, एक गाना सुना है तो मेहरबानी।
1: बोलिए बोलिए ना, कोशिश जारी रहेगी।
0: मूवी का
1: बोलिए
0: नाम है जवाब और सॉन्ग है
1: जवाब।
0: आ जा मेरी जान, ये है जून का महीना, पलकों
1: अच्छा
0: की छांव में बिठा ले हो हसीना।
1: बिल्कुल, मैं कोशिश करती हूँ, आप सुनते रहिए। हाँ, थैंक
0: शुक्रिया,
1: यू,
0: बहुत बहुत
1: शुक्रिया,
0: आपका,
1: शुक्रिया,
0: थैंक यू।
1: बाय बाय।

0: Right, that was Sarah Lisa, Radio Shocking. Kavya, do you know that he has a huge collection of radio transistors and he has a huge collection of cassettes and he keeps sending us those pictures on WhatsApp and
1: Wow.
0: that collection can actually be put in a museum. You know, and
1: Oh.
0: I asked him, I said, आप म्यूजियम क्यों ट्राई करते हैं? एंड ही सेड, एक दिन मैं बनाऊंगा. एंड इतनी शौकीन है तो वो खुद को बोलते हैं रेडियो शौकीन. एंड सच पीपल आर वेरी इंस्पायरिंग इंडीड.
1: एब्सोल्युटली, उनकी बातें सुनकर भी मुझे बहुत अच्छा लगा. देयर वाज सो मच इन्फॉर्मेशन दैट आई माई सेल्फ डू नॉट नो अबाउट,
0: यस,
1: जो उनकी बातों से आज मुझे पता
0: आई
1: चला.
0: लर्न सो मच.
1: या
0: एनीवे, एक खूबसूरत गाना हम प्ले करते हैं. इतने में हम ये भी गाना ढूंढते हैं जो सरवली साहब ने रिक्वेस्ट किया है. एंड यस, टेक दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग अवे.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू आकाशवाणी एफएम रेनबो 101.9। रेनबो के साथ है लाइफ रंगीन, हमारा फेवरेट सेगमेंट जो है हेलो रेनबो शुरू हो चुका है। और हमारे कॉलर्स, बिल्कुल इतने सारे कॉल्स

0: रहे हैं, व्हाट्सएप के मैसेजेस भी हैं यहाँ पे। सो श्री काव्या, हमारी
1: यस
0: आरजे जो हमारे साथ है, श्री काव्या, कॉलर्स के बारे में आपका पहला मतलब एक्सपेक्टेशन क्या था? ओ माय गॉड, कॉलर्स कॉल करेंगे, कौन कॉल कर रहा है पता नहीं चलेगा, ऐसे ऐसे, लाइक व्हाट वर योर थॉट्स?
1: पहले तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि मैं रियल टाइम में हमारी कॉलेज से बात कर पाऊंगी और उनके ओपिनियंस जान पाऊंगी, विच वॉज वेरी एक्साइटिंग फॉर मी. और सेकेंड ये था कि जैसे आपने कहा दैट फियर ऑफ अनसर्टेनिटी कि कॉल कर कौन रहा है, कहाँ से आएगा, कैसे बात करूँगी मैं, कैसे मैनेज करूँगी, ये सब कुछ. येस आई वॉज अ लिटल वरिड अबाउट, बट जैसे जैसे मैं उनको जानने लगी हूँ, उनके अच्छे अच्छे व्हाट्सएप मैसेजेस पढ़ने लगी हूँ, उनसे बात करने लगी हूँ, ऑल आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इज मोर एंड मोर कॉन्वर्जेशंस विद देम. जयश्री.
0: इंडीड, एंड ऐसे जो रिश्ते बनते हैं रेडियो पे, हमारे कॉलर्स जब हमें कॉल करते हैं ना, वो हमारे चेहरा देख चुके होते हैं, सिर्फ हमारी आवाज़ से पहचान होती है, और उनके जो जज्बात हैं, उनका जो प्यार है, और जैसे वो पूछते हैं कि आप पिछले हफ्ते नहीं आए थे, और ऐसे इतना अच्छा लगता है, इतना प्यार अच्छा लगता है। एंड शायद उसी लिए ये 11 साल जो मैंने यहाँ पे बताया कॉन्सोल पे, बहुत ही प्यारे 11 साल है मेरे, और जो 12वें साल में मैं एंट्री ले रही हूँ, और आपका ये पहला साल है।
1: एग्जैक्टली.
0: आई
1: यस,
0: होप यू मेक मोर रिलेशनशिप्स, आई होप यू मेक मोर पीपल स्माइल
1: थैंक
0: थ्रू
1: यू,
0: योर आर्जिंग।
1: थैंक यू. इट जस्ट फील्स लाइक मैं ऑलरेडी उन्हें जानती हूँ, बिकॉज द वे दे आर सो वेलकमिंग. और जहाँ जैसे मैंने आज मैसेजेस पढ़े कि काव्या जी कैसे हो आप, आपको सुन के अच्छा लगा, ऐसे लग रहा है कि मैं उनको बरसों से जानती हूँ, ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये मेरा पहला शो है.
0: सही है। चलिए, अभी एक बहुत ही खूबसूरत गाना गाने का रिक्वेस्ट आया है, एंड हमारे सरवली जी से, जो हमारे पहले कॉलर रह चुके हैं, वो वाला गाना प्ले करते हैं। एंड हियर वी गो फ्रॉम द फिल्म जवाब, और इस गाने में जून महीने का जिक्र हुआ है। चलिए सुनते हैं आप और मैं। स्टे ट्यून्ड, दिस इज रेनबो FM 101.9, रेनबो एज कलर्स टू योर लाइफ।

0: ऑलराइट, मतलब अनोखे अनोखे गाने हमें इंट्रोड्यूस करवाते हैं हमारे कॉलर्स. शायद ये गाना मैंने कभी सुना ही नहीं था, जून का महीना. क्या आपने सुना काव्या?
1: नो, दिस इज द फर्स्ट टाइम.
0: बिल्कुल. चलिए, लेट्स सी हुज ऑन द लाइन. हेलो रेनबो.
2: हेलो रेम्बो, गुड आफ्टरनून. आदाब जयश्री जी और काव्या जी दोनों को भी मेरा.
0: आदाब आदाब. और कैसे हैं शेर खान साहब?
2: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है और उम्मीद करता हूँ आप दोनों भी बिल्कुल खैरियत से होंगे और हमेशा खैरियत ही रहना चाहिए, यही दुआ है. और सभी भाई बहनों को, दोस्तों को भी मेरा प्यार भरा सलाम आदाब. बस यही दुआ करता हूँ आप सभी को हमेशा अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे और सेहतमंद रखे हमेशा.
0: दुआ में याद कीजिए ऐसे ही हम सबको. और टॉपिक आपने सुना?
2: बिल्कुल बिल्कुल जी. हॉलीडे समर के बारे में है. अब जैसे आप तो जानते हैं कि मैं 3-4 साल ब्लाइंड हो गया था, तो मैं स्कूल वगैरह में नहीं जा सका, नहीं पढ़ सका. लेकिन जब हमारे भाई बहन जब पढ़ते थे, तो जब ये हॉलीडे समर की जब छुट्टियां जब होती थी, तो तब हमारे पापा मम्मी पूरी फैमिली के साथ हम हमारे नाना नानी के घर पे चले जाते थे गाँव को. तो नाना के घर पे इतना बड़ा घर था और वो पुराने घर थे, मट्टी के दीवार वाले, और उनके घर पे इतने सारे पेड़ थे, जामुन का पेड़ था, जाम का पेड़ था, अनार का पेड़ था, ऐसे ढेर सारे पेड़ थे. और मैं बहुत छोटा था तब, तो मैं उन झाड़ की थोड़ी सी नीचे वाली डाली पे इस पे चढ़ के बैठता था. तो मेरे मम्मी बहुत डांटते थे, अरे दिखता नहीं, गिर जाएंगा, पड़ जाएंगा. बहुत उनकी मार भी पड़ती थी, डांट भी. कि मैं पापा देखते थे, मैं बताता था पापा देखो मैं यहाँ पे चढ़ा इस पे, और ऊपर चढ़ बोलते थे, बेटा और ऊपर चढ़. मैं और जाता था, मम्मी बोलते थे अरे गिर जाएगा वो, नाना नहीं नहीं चढ़न दे, खेलन दे बोलते थे उसको. मैं चढ़ते चढ़ते एकदम आखिरी ऊपर चले जाता था, तो चढ़ जाता था ना, मैं कभी गिरा ना कभी खरोच लगी. तो मुझे पापा ने बहुत हिम्मत दी, तो मैं वो जाम के झाड़ पे, जामुन के झाड़ पे चढ़ के बैठ जाते थे. और फिर हम भाई बहन मिलके झाड़ पे बैठते थे, और एक वहां से रोड पे से गाड़ियां आती जाती थी, तो हम खेल खेलते थे कि देखो अब उधर से ट्रक आ रहा या बस आ रही या कार आ रही. आवाज दूर से सुन के बोलते थे हाँ अभी कार आ रही. तो
0: अच्छा,
2: कभी बहन
0: आप
2: जीत
0: भी
2: जाती थी,
0: जानते
2: कभी मैं
0: थे.
2: जीत जाता था. तो हम ऐसा बचपन में बैठ के उस पे पेड़ पे बैठ के खेल खेलते थे,
0: बहुत
2: तो
0: खूबसूरत यादें हैं शेर खान साहब
2: बहुत इंजॉय होता.
0: जी. थैंक यू सो मच शेयर करने के लिए. हेलो. ओके, शायद लाइन डिस्कनेक्ट हो गया. लेट मी टेल आर लिसनर्स दैट शेर खान इज़ विजुअली चैलेंज्ड, डिफरेंटली एबल्ड, एंड जब भी वो बातें करते हैं हम उसी उसी को ध्यान में रखते हुए सुनते हैं. और आपको लगा होगा कि ये गेसिंग गेम क्या है. सो क्योंकि वो दिल से देखते हैं इसलिए उन्होंने गाड़ी की आवाज़ से वो गेस करते थे बचपन में, ये वो बता रहे थे. इट्स रियली ब्यूटिफुल समर हॉलीडेज़. हम इंतज़ार करते हैं लेकिन झट से आते हैं, फट से ख़त्म हो जाते हैं समर हॉलीडेज़. अभी तो इतनी सारी चीज़ें हैं. आजकल बच्चे फ़ोन में घुसे हुए हैं लिटरली. आउटडोर एक्टिविटीज़ तो मतलब सोचते ही नहीं उसके बारे में, है ना काव्या?
1: एब्सोल्युटली. हम समर्स में धूप से कोई लेना देना नहीं था, सुबह से लेके शाम तक बस बाहर ही थे. मम्मी बुलाए कि अंदर आ जाओ, एंड वी विल बी लाइक मम्मी 5 मिनट्स 5 मिनट्स, और वो 5 मिनट्स कभी ख़त्म ही नहीं होता था.
0: एंड एक ऐसा बिल्कुल मुझे बताना था कि जवाहर बाल भवन, जो हमारे स्टूडियो के एग्जैक्टली ऑपोजिट पब्लिक गार्डन्स है ना, वहाँ पे जवाहर बाल भवन करके समर कैंप होता था.
1: ओह
0: यू नो उसका फीस कितना था?
1: नो,
0: 10 रुपीज़.
1: ओह माय,
0: एंड
1: ओके.
0: क्या क्या सिखाते थे पता है? क्लासिकल डांस, साइंस, साइंस का लैब था, लेबोरेटरी था जवाहर बाल भवन में. यू स्टिल हैव दैट. और ऑपोजिट में हेल्थ म्यूजियम जो अभी भी है,

0: अभी अभी तुम गाना गा रहे थे।
1: जी
2: गाना गा रहे थे।
1: जी जी मगर ऐसी गलती कभी नहीं होगी।
2: ऐसी गलती रोज होगी।
1: जी
0: जी ऐसी गलती रोज होगी। आज से तुम क्लाउन, एक जोकर जो गाएगा और हंसाएगा।
1: मैं जोकर?
0: हाँ
1: आप आपके यहाँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया साहब।
0: देखो मेरा नाम साहब नहीं, मेरा नाम महेंद्र है।
1: जी महेंद्र साहब।
0: फिर साहब?
1: नहीं साहब,
0: महेंद्र।
1: महेंद्र साहब।
0: यू आर ए क्लाउड, सिंगिंग क्लाउड।
1: बहुत बहुत शुक्रिया।
3: पुजद्रव ले आए।
1: महेंद्र साहब जोकर।
3: पुजद्रव ले आए।
1: नमस्ते। आपके लिए। दादा दादा। हाँ हाँ दादा
3: दादा।
1: स्वीदानिया जोकर गाएगा हंसाएगा।

सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

0: मरने से।
1: खूबसूरत गाने, मतलब बेताबी से रुकी हुई बातें वो सारी हमने कर ली। बात कुछ गलतबंदी गानों का सिलसिला, और यही ख़त्म होता है हमारा ये खूबसूरत शो जो शुरू हो चुका था 10 बजे से लेके अभी तक मेरे साथ, यानी आरजे जयश्री और श्री काव्या के साथ। सो काव्या, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर
0: थैंक यू सो
1: शोज कमिंग
0: मच।
1: फॉरवर्ड, एंड एज आई ऑलवेज

Say, be kind to animals. It is a रेनिंग सीजन एंड इट इज़ अ रेनी सीजन एंड अगर आप अपने गेट्स या दरवाजे कम्युनिटी एनिमल्स के लिए खोलें, बी काइंड, डू दैट. इट्स रियली रियली ग्रेटफुल एंड बींग काइंड इज़ फ्री. इट्स नॉट एट ऑल कॉस्टली. जस्ट बी काइंड, वेरी इंपॉर्टेंट. एंड दिस इज आरजे जयश्री एंड आरजे श्री का व्यास साइनिंग ऑफ.

ये आकाशवाणी हैदराबाद है। अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे उर्दू प्रोग्राम नए रंग।

0: दोस्तों 101.9 FM पर आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम नैरंग। मैं हूं आपका दोस्त आरजे उसामा। दोस्तों आज सबसे पहले आपको नैरंग में पेश होने वाले प्रोग्राम की तफसील बता देते हैं। दोस्तों प्रोग्राम का आगाज़ होगा हर्फ ताबिंदा से, तहरीर व पेशकश होगी मोहम्मद नूरुद्दीन साहब की। उसके बाद आप सुनेंगे भुलाए नहीं भूलते प्रोग्राम के तहत खूबसूरत फिल्मी नगमे और प्याम शब के साथ नैरंग का इख्तिताम होगा। तो आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं हर्फ ताबिंदा से। तहरीर व पेशकश है मोहम्मद नूरुद्दीन साहब की।
1: इमदाद का मतलब और अहमियत माशरती, अखलाक़ी और रूहानी एतबार से नहायत वसी और गहरी है। ये लफ्ज़ आम तौर पर मदद, सहारा, एयानत और हाथ बटाने के मायनों में इस्तेमाल होता है। इस्लाम ने इमदाद को एक आला इंसानी क़द्र और फ़र्ज़ करार दिया है जो माशरे की बुनियाद होता है और इंसानियत की बहबूद के लिए लाजिम है। इमदाद की तारीफ़ और मफहूम। इमदाद का लघवी मतलब है किसी की मदद करना, उसकी ज़रूरत को पूरा करना और उसके मसाइल का हल तलाश करना। इमदाद

दोस्तों, ये आकाशवाणी हैदराबाद है और आप प्रोग्राम भुलाए नहीं भूलते में सुन रहे हैं खूबसूरत फिल्मी नगमे। अभी जो नगमा आपने सुना वो फिल्म रूप तेरा मस्तियाना से लिया गया था, जिसे गाया था मोहम्मद रफ़ी ने। दोस्तों, मोहब्बत में बेवफाई का इल्ज़ाम तो लगता रहता है, मोहब्बत के साथ वफा और बेवफाई दोनों का रिश्ता होता है। इसीलिए तो कभी कभी गालिब ने कहा था कि मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को कभी अच्छी लगती है और कभी उसको मोहब्बत करके पछतावा भी होता है। कहाँ का इश्क और कैसी मोहब्बत, जब मोहब्बत में इंसान नाकाम होता है तो इस तरह के ख्यालात उसके जहन में आते हैं। लेकिन मोहब्बत ज़रूरी नहीं है कि कामयाबी हो, मोहब्बत ज़रूरी नहीं है कि उसमें सब कुछ ठीक ही हो। मोहब्बत में तमाम मंजिलें आती हैं, तमाम मरहले आते हैं। कभी नाराज़गी होती है, कभी खफगी होती है, कभी खुशी होती है, कभी रूठना होता है, कभी मनाना होता है। तो मोहब्बत का ये सिलसिला होता है, कभी प्यार होता है, कभी इकरार होता है, कभी इनकार होता है। तो हम इकरार, इनकार और ये सारी हसीन सफ़र के साथ नगमों के इस सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये खूबसूरत गीत।

दोस्तों, ये आकाशवाणी हैदराबाद है और आप गीत भुलाए नहीं भूलते प्रोग्राम में सुन रहे हैं खूबसूरत गीत, नगमों का और गीतों का ये सफ़र जारी है। दोस्तों, वाकई प्यार में मंजिल मिलना ज़रूरी नहीं है और मंजिल का पता भी नहीं होता है, बस दो राह ही होते हैं और चलते रहते हैं, चलते जाते हैं। रास्ते में रुकावटें आती हैं, मुश्किलें आती हैं, कभी कभी आसानियाँ भी आती हैं, लेकिन मंजिल का पता नहीं होता। किसी शायर ने कहा है, किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई हमारी तरह उम्र भर सफर में रहा। सुनिए ये गीत।

दोस्तों, ये आकाशवाणी हैदराबाद है और आप प्रोग्राम भुलाए नहीं भूलते में सुन रहे हैं खूबसूरत फिल्मी नगमे। दोस्तों, हम बात कर रहे थे मोहब्बत की और ज़िंदगी की। दोस्तों, मोहब्बत में हर महबूब की एक ख्वाहिश ज़रूर होती है कि काश मेरा महबूब मुझे गले लगा ले। गले मिलने की तमन्ना होती है, कभी कभी तमन्ना पूरी भी होती है, लेकिन कभी कभी वो हसरत में तब्दील हो जाती है, यानी महबूब का दीदार होना तक मुश्किल हो जाता है। तो मोहब्बत पहले की मोहब्बत और थी, और वक्त के साथ साथ मोहब्बत में भी तब्दीलियां आती जाती हैं। आज का ज़माना बहुत तेज़ रफ्तार है और उसी तरह से कम्युनिकेशन और एक दूसरे से बातचीत का ज़रिया भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये चीज़ें थोड़ी आसान भी हो गई हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ हमारे सामने कई चैलेंजेस भी हैं। तो मोहब्बत में भी बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं और मोहब्बत का सफ़र इतना आसान भी नहीं होता। मोहब्बत में जब महबूब को उसकी महबूबा नहीं मिलती है, तो फिर वो ख्वाब की दुनिया का भी सहारा लेता है और उसको ऐसा लगता है कि बस जब यहाँ इतनी तकलीफ़ हो रही है तो क्यों ना ख्वाब का सहारा लिया जाए और अपने महबूब को ज़रा ख्वाब में ज़रा देखा जाए। और एक ख्वाब की रानी उसके तसव्वुर में जन्म लेती है और वो सोचता है कि वो मेरे ख्वाब की रानी मुझे कब मिलेगी। सुनिए ये ना।

दोस्तों, यह आकाशवाणी हैदराबाद है और आप भुलाए नहीं भूलते प्रोग्राम में सुन रहे हैं खूबसूरत फिल्मी नगमे। दोस्तों, आप जहाँ कहीं भी ये नगमे सुन रहे हैं ज़रूर लुत्फ़ानंदोज़ हो रहे होंगे और आपको मज़ा आ रहा होगा। आपको ऐसा लगता होगा ना कि नगमे ऐसा लगता है कि हमारी थकन को दूर करने के लिए सुनाए जा रहे हैं, और ऐसा महसूस तो ज़रूर होता होगा कि हम फ़िलहाल सब कुछ छोड़कर थोड़ा माजी के दरीचों में झांकें, पुराने नगमों से लुत्फानंदोज़ हों। इसीलिए तो हम आपको इस तरह के बेहतरीन नगमे आपकी खिदमत में पेश करते हैं, ताकि आप महसूस भी हों और थोड़ी देर के लिए ये नगमे आपकी थकन उतार दें, आपको ज़हनी सुकून दें। तो नगमों का ये सफ़र जारी रहेगा। फ़िलहाल सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों, ये आकाशवाणी हैदराबाद है और आप प्रोग्राम भुलाए नहीं भूलते में सुन रहे हैं खूबसूरत फिल्म नगमे। नगमों का हमारा ये सफ़र जारी है और हम आपके लिए बेहतरीन नगमे पेश कर रहे हैं। दोस्तों, मोहब्बत कुर्बानी मांगती है। मोहब्बत एक ऐसा जज्बा मांगती है जो कि आपके लिए हमेशा साथ आपके खड़े रहे। मोहब्बत उतनी आसान नहीं होती। दोस्तों, कहते हैं कि दुनिया बहुत मतलबी है और इस मतलबी दुनिया में मोहब्बत जैसी चीज़ का होना बड़ी चीज़ है। दोस्तों, चीज़ों को देखने का जाविया अलग अलग होता है और बहुत से लोग निगेटिव होते हैं, बहुत पॉजिटिव होते हैं, तो हमें पॉजिटिव होकर सोचने का अंदाज़ अपनाना चाहिए, चाहे वो मोहब्बत का मामला हो या कोई और मामला हो। दोस्तों, मोहब्बत किसी से भी हो सकती है। सिर्फ मोहब्बत महबूब और महबूबा की मोहब्बत ही नहीं होती। मोहब्बत एक अजीम जज्बा है। माँ बाप की मोहब्बत, भाई बहन की मोहब्बत और एक दूसरे से आपस में जो मोहब्बत होती है, उसके अलावा एक ऐसी

दोस्तों, ये आकाशवाणी हैदराबाद है और आप प्रोग्राम भुलाए नहीं भूलते में सुन रहे हैं खूबसूरत नगमे। अभी आपने फिल्म बॉर्डर का ये खूबसूरत नगमा सुना जिसमें सब कुछ है, दर्द भी है, इंतज़ार भी है और एक दूसरे की मोहब्बत भी है, एक दूसरे से मिलना बिछड़ना भी है, तमाम जज्बात को समेटे हुए ये गीत बहुत ही खूबसूरत गीत था। दोस्तों, हम बात कर रहे थे ज़िंदगी और ज़िंदगी में मोहब्बत की भी। दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि मोहब्बत किसी, हर एक की खूबसूरती के पैमाने अलग अलग होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि महबूब बहुत ही खूबसूरत ही हो। मोहब्बत किससे, कब, कहां, कैसे हो जाए कोई नहीं जानता है। कभी कभी किसी की सादगी किसी को इतनी पसंद आ जाती है कि वो उस पर दिल दे बैठता है। सुनिए ये खूबसूरत।

0: जी दोस्तों, यह आकाशवाणी हैदराबाद है और आप प्रोग्राम भुलाए नहीं भूलते में सुन रहे हैं खूबसूरत फिल्मी नगमे। तो अभी आपने खूबसूरत सा नगमा सुना। आप मुझे उम्मीद है कि ज़रूर लुत्फानंदोज़ हो रहे होंगे, आपको मज़ा आ रहा होगा और आप इन नगमों के ज़रिए अपनी थकन को दूर होता हुआ भी महसूस कर रहे होंगे। दोस्तों, मोहब्बत, मोहब्बत क्या है? मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जहाँ आप इसार, कुर्बानी और वो तमाम चीज़ के लिए तैयार रहिए जो मोहब्बत के लिए ज़रूरी होती है। मोहब्बत में एक आशिक महबूब की हर तरह से तारीफ करता है, महबूब की अदाओं पे दिल और जान निछावर करता है और ऐसे ऐसे अल्फाज उसके लिए इस्तेमाल करता है जो वक्ती तौर पर हमें लगता है तसव्वुराती है, लेकिन उनके महबूब के जज्बों का क्या कहना है, आइए सुनते हैं ये खूबसूरत।
1: न झटको जुल्फ से पा

दोस्तों, ये आकाशवाणी हैदराबाद है और आप प्रोग्राम भुलाए नहीं भूलते में सुन रहे हैं ऐसे खूबसूरत और पुराने नगमे जो यकीनन आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जहाँ पर आप सब कुछ भूल जाना चाहते हैं और ऐसा लगता है थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल कर इन नगमों में खो जाते हैं। तो इसी से मिलता जुलता इन्हीं जज्बात को पेश करता हुआ एक और नगमा आपके लिए पेश है।

दोस्तों, ये आकाशवाणी हैदराबाद है और आप प्रोग्राम भुलाए नहीं भूलते में सुन रहे हैं खूबसूरत फिल्मी नगमे। दोस्तों, इन नगमों को सुनकर मुझे भी फिराक वरकपुरी की चार लाइन एक रुबाई से मुझे याद आ गई, तो सोचता हूँ कि आपको सुना दूँ। तो सुनिए

ज़िंदगी दर्द की कहानी है, ज़िंदगी दर्द की कहानी है, चश्म अंजुम में भी तो पानी है। जब्त कीजिए तो दिल है अंगारा, जब्त कीजिए तो दिल है अंगारा, और अगर रोइए तो पानी है। तो दोस्तों, ज़िंदगी को देखने समझने का हर एक का नज़रिया अलग अलग होता है, और यही मामला मोहब्बत के साथ भी है। मोहब्बत को भी समझने देखने का नज़रिया लोगों के पास अलग अलग है। अभी तक कुछ लोग ऐसा भी मानते थे मोहब्बत में दूरियां, मजबूरियां, वो सारी चीज़ें साथ में चलती हैं, लेकिन अब आपके लिए एक ऐसा नगमा हम पेश करने जा रहे हैं कि जहाँ पर महबूबा ख़ुद बोल दे के जब हमने प्यार किया है, प्यार किया तो डरना क्या। जी दोस्तों, फिल्म मुग़ल आज़म का एक ऐसा नगमा जिसने मोहब्बत में बगावत को जन्म दिया। सुनिए ये खूबसूरत नगमा।

दोस्तों, यह आकाशवाणी हैदराबाद है और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम भुलाए नहीं भूलते में खूबसूरत फिल्मी नगमे। अभी आपने के आसिफ की शाहकार फिल्म मुगल आज़म का एक खूबसूरत सा नगमा सुना। दोस्तों, कहते हैं इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, यही वजह है कि मोहब्बत अपना इजहार कर देती है, उसको छुपाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन मोहब्बत में ज़रूरी नहीं है कि इंसान को कामयाबी मिले, और अगर कामयाबी नहीं मिलती है तो एक आशिक एक महबूब तसव्वुर का सहारा लेता है और उसको लगता है काश ये होता तो ये होता, उसके दिल में तरह तरह के ख्यालात आते हैं। तो सुनिए ये खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों, ये आकाशवाणी हैदराबाद है और आप प्रोग्राम भुलाए नहीं भूलते में सुन रहे हैं खूबसूरत फिल्मी नगमे। और आपके दिल में भी दोस्तों कुछ ख्याल आ रहे हैं तो हमें ज़रूर बताइए, क्योंकि जाहिर है ख्याल एक ऐसी चीज़ है जो किसी के दिल में भी आ सकता है और अपनी जगह बना सकता है। तो आपने मोहब्बत के अलग अलग जाविये और पहलू इन नगमों में ज़रूर सुना होगा। तो दोस्तों, हम आप अपने सफ़र के आखिरी मुकाम की तरफ बढ़ रहे हैं। खूबसूरत नगमों का सफ़र फ़िलहाल तो जारी है और इसी के साथ सुनते हैं हम अपना अगला गीत, पेश है आपके लिए।

दोस्तों, इसी गीत के साथ फिल्मी गीतों का सिलसिला यहीं ख़त्म होता है। अब पेश है पयाम शब, तहरीर व पेशकश है ज़ैदी साहब की, समाप्त कीजिए।

जी दोस्तों, हर चीज़ की एक हद होती है। अभी आपने प्याम शब में सुना, प्याम शब तहरीर पेशकश थी जनाब जैदी साहब की। दोस्तों, हम प्रोग्राम के आखिरी मरहले तक पहुंच चुके हैं और दोस्तों, हमने ज़िंदगी, मोहब्बत और तमाम चीज़ों पर ढेर सारी बातें की। मुझे उम्मीद है कि इन नगमों ने आपको ज़रूर महसूस किया होगा और एक अलग सफ़र पे यह नगमा आपको ले गया होगा और आपने बहुत ज़्यादा इससे मज़ा लिया होगा, लुत्फ़ उठाया होगा। तो मंजिलें और मोहब्बत ये साथ साथ हमेशा नहीं होती। तो दोस्तों, इसी प्याम शब के खूबसूरत पैगाम के साथ हमारा नया रंग प्रोग्राम यहीं ख़त्म होता है। अगली

0: فیروزی. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है. राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही. राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है.
1: देशर प्रधानमंत्री भाव्य दायित्व ग्रहण करवा दिन
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभालने के बाद से राष्ट्रीय हित में कई कदम उठाए हैं. इस महीने उन्होंने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया. मैं सभी नागरिकों की तरफ से इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देती हूं. मैं कामना करती हूं कि वे देश के लोगों के हित के लिए निरंतर काम करते रहें और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने में राष्ट्र का नेतृत्व करते रहें.
1: यह मोर आंतरिक कामना.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे. श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं. उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया.
3: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है. केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास. इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं. जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है.
0: बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया. श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त के रूप में 18,880 करोड़ रूपये जारी किए. प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसान को लाभ मिलेगा. प्रधानमंत्री कोलकाता में कल INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे. इन पोत में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है. 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्वभर में मनाया जाएगा. इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग. मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित होगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे. रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा. राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG 2026 की पुनः परीक्षा कल आयोजित की जाएगी. ये पुनः परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी. इस पुनः परीक्षा में 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे. महाराष्ट्र के परभणी जिले के मनवथ तालुका में आज एक निर्माणाधीन मंदिर का एक हिस्सा गिरने से कम

0: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए सशक्तिकरण से समृद्धि की ओर बढ़ते भारत पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार नीलू रंजन और सर्जना शर्मा। परिचर्चा का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
1: 12 वर्षों के कार्यकाल में वर्तमान सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सभी को भागीदार बनाकर राष्ट्र विकास का जो मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, उसके तहत उन्होंने जो एक लक्ष्य रखा है 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का भारत को, उसमें उन्होंने 4 जो स्तंभ है उनकी पहचान की है, जिसे ज्ञान भी कहा जाता है, गरीब, युवा और अन्नदाता यानी कि हमारे किसान और नारियां। तो इन चारों जो वर्ग है उनके सशक्तिकरण पर सरकार ने लगातार बल दिया है। अगर हम हर बजट में देखें, जो भी प्रमुख संबोधन होता है प्रधानमंत्री जी का, उसमें इन वर्गों को सशक्त करने की बात की जाती है। और आज हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट सर्जना शर्मा जी और नीलू रंजन जी जुड़े हैं। इनसे हम समझना चाहेंगे कि इन 12 वर्षों में जो ये 4 वर्ग है इनको सशक्त करके कैसे जो देश को समृद्ध करने का सपना है उसको साकार करने की तरफ हम बढ़े हैं। सो आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम।
2: थैंक यू सोने जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: सर्जना जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं, लेडीज फर्स्ट कहा जाता है। सो आपसे मैं महिलाओं की ही बात करना चाहूंगी। जिस तरह का विकास महिलाओं का हुआ है और जो सरकार का मूल मंत्र रहा है कि विमेन्स डेवलपमेंट से आगे बढ़कर हमें विमेन्स लेड डेवलपमेंट यानी महिलाओं के नेतृत्व में विकास जो है उसकी ओर बढ़ना है, हमें बताएं कि इन 12 वर्षों में कौन से ऐसे परिवर्तनकारी रिफॉर्म्स हैं जो महिलाओं के लिए लाए गए हैं जिनको आप सबसे महत्वपूर्ण मानती हैं।
2: सोनू जी देखिए, महिला जो है वो कोई भी परिवार है, परिवार की धुरी महिला है, और जो एक अच्छा परिवार है वो एक अच्छे समाज का, और एक अच्छा समाज अच्छे राष्ट्र का निर्माण करता है। अगर महिला सशक्त है, अगर महिला समृद्ध, मेरा मतलब खाली पैसे से नहीं, और भी बहुत सारी चीजें होती है जिसको समावेशी विकास कहते हैं, अगर महिला उस तरह की है तो वो पूरे अपने परिवार को बढ़िया करेगी, समाज को अच्छा बनाएगी और फिर राष्ट्र को। तो इसका मतलब धुरी जो है परिवार से लेकर राष्ट्र तक महिला के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता। भले ही आज से कुछ साल पहले तक महिलाएं बहुत घर से बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन घर में रहते हुए भी जो उनकी अर्थव्यवस्था है, जो उनका मनी मैनेजमेंट है, जो उनका रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, पुरुषों को तो शायद बहुत चीजें घर की पता भी नहीं होती जितना वो खुद सब मैनेज कर लेती हैं। आपने देखा होगा कि कोविड में पूरी दुनिया की इकोनॉमी ध्वस्त हुई, लेकिन भारतीय महिलाओं को जिस तरह की ट्रेनिंग है पैसे को जोड़ने की और आत्मनिर्भरता का, जो उनका मूल मंत्र है, तो उसके कारण हमारी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी रही, क्योंकि सेविंग की बहुत आदत है हमारी महिलाओं को। तो मोदी जी ने जो ये सोचा तो उसमें देखिए 2-3 चीजें तो मैं कहूंगी कि जो सबसे अच्छी रही, एक है उज्ज्वला योजना और एक है हर घर नल हर घर जल। तो ये जो 2 चीजें सुलभ हुई हैं महिलाओं को, उससे उनकी जो फिजिकल लेबर है वो कम हुई है, उनकी एफिशिएंसी इम्प्रूव हुई है। आपको लकड़ियां बिनने जंगल में नहीं जाना और धुएं में काम नहीं करना। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आपको सब्सिडाइज सिलेंडर मिल रहा है, तो आप सोचिए उसकी कितनी मेहनत कम हुई। खाना अच्छा बनेगा, वो भी खुद भी रिलैक्स रहेगी। दूसरा है, अगर हम देखें कि हमारे भारत में बहुत सी ऐसी जगहें थी जहां पे महिलाओं की आधे से ज्यादा एनर्जी पानी लाने में भी लगती थी
1: जी,
2: तो ये जल मंत्रालय ने जो काम किया है, हर घर नल जो पहुंचाया है, हर घर जल

0: बचाया है, उसका भी बहुत लाभ हुआ है। फिर आपने इनको कहा है कि जरूरी नहीं कि आप 10 से 5 की जॉब करने जाओ, अगर आपके घर के आसपास या अपने घर में बैठे आप क्रोशिया भी बुनते हैं, आप स्वेटर भी बुनते हैं, आपको सिलाई भी आती है, या आपके आसपास जैसे कि मखाना की खेती में आपने देखा होगा, मशरूम खेती, बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो लखपति दीदी बनी है उन्हीं चीजों से। जरूरी नहीं कि आपके पास बीए एमए की डिग्री हो, ऐसा भी नहीं है। तो जो इस तरह की योजनाएं हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो बनाए जिसमें कि लगभग 91 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप है और 10 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन गई है
1: जी।
0: तो इस तरह की जो योजना, और दूसरा मुद्रा योजना जो है कि अगर अपने घर में मुझे कोई काम शुरू करना है, मुझे लगा कि मुझे एक सिलाई स्कूल खोलना है, मुझे लगा कि मुझे क्रोशिया सेंटर बनाना है अपने घर में, मुझे लगा कि मेरे पास जो स्किल है जो मुझे किसी स्कूल से नहीं अपनी फैमिली से ट्रेडिशनल मिली है, अगर मैं उसी को आगे विकसित कर, कौशल हुनर जो कि परंपरागत हमारे यहाँ आपने देखा कि कोई साड़ी बनाता है तो कोई लकड़ी का सामान बनाता है, तरह तरह की चीजें हैं, मतलब गिनाना मुश्किल है क्योंकि भारत में इतनी विविधता है। अब कुछ तो महिलाएं जैसे हल्दी उगा रही है, कोई मशरूम उगा रहे हैं, तो उनको जो लोन मिल रहा है सस्ती किश्तों पर, मतलब कि उनको बहुत ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी, और मुद्रा लोन जो मिल रहा है इससे भी उनका जो लाइफ है वो बहुत आसान हुई है। दूसरा है शिक्षा को लेकर भी बहुत काम हुए हैं, केजी टू पीजी जो है कि आप केजी से लेकर पीजी तक बच्चियां जो है वो पढ़ेंगी। और फिर ये है कि सुरक्षा का वातावरण, आप देखेंगे कि कई राज्यों में तो ऐसा था कि 6 बजे के बाद लड़कियां घर से नहीं निकलती। उत्तर प्रदेश का मैं आपको एक उदाहरण दूं जैसे कि, तो अब देखिए वहां बेखौफ लड़कियां रात को 2-2.5 बजे तक भी आराम से घूम सकती हैं क्योंकि सुरक्षा इतनी ज्यादा। जब तक माँ और बेटी को नहीं लगेगा कि वो सुरक्षित है तो बेटी बाहर काम करने उसको कोई जाने नहीं देगा।
1: बहुत इंपॉर्टेंट ये सशक्तिकरण का,
0: ये बहुत सुरक्षा की भावना, वो जो इस सरकार ने सुरक्षा की भावना दी, महिला थाने खोले, महिला हेल्पलाइन खोली कि आप तुरंत फोन कीजिए आपको मदद मिलेगी। और एक और देखिए कि महिलाओं को मैटरनिटी लीव में डबल किया है
1: जी।
0: 3 महीने से 6 महीने किया, ये भी एक बहुत बड़ा सशक्तिकरण है महिला का।
1: बिल्कुल,
0: मातृत्व सुरक्षा योजना है, शिशु योजना है, इन सब योजनाओं ने महिलाओं के जीवन को आसान किया है, सुविधा दी है। मैं बात कर रही हूँ उन महिलाओं की जो की अभी तक बहुत बाहर निकल के काम नहीं करते, अब हम बात करते हैं उन महिलाओं की जो पढ़ लिख के आगे, जैसे कि आपने सैनिक स्कूल लड़कियों के लिए खोल दिया गया, जैसे कि एनडीए खोल दिया गया लड़कियों के लिए, लड़कियां फाइटर पायलट हैं। तो ये जो इस तरह की चीजें भी आई है ना, उससे पूरे देश में बाकी लड़कियों को भी एक प्रेरणा मिली। 26 जनवरी परेड का आपने जो स्वरूप बदलते हुए देखा होगा, आप देखिए कैसे स्वरूप बदला है। पहले आप देखिए किसी भी कंटिजेंट में लेडी नहीं लीड करती,
1: एकदम गर्व से सर ऊंचा हो
0: जाता है। अब आप देखिए, अब 26 जनवरी परेड का रूप बदल गया है। तो मुझे लगता है बहुत सारे, और इसका सबका कारण मैं एक समझती हूँ, क्योंकि इस सरकार का जो है अंत्योदय, जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, शुरू से ही भाजपा का ये मूल नियम रहा है अंत्योदय, अंत से उदय करना है। तो ये बहुत सी योजनाएं जो है जो सबसे वंचित वर्ग है वहां से शुरू होती है, और जैसे कि जो अफोर्ड कर सकते हैं एलपीजी, तो उनको अब आप देखिए सबका हटा दिया, हमने भी सरेंडर
1: बिल्कुल,
0: और वो उन वर्गों तक पहुंचा जिनको उसकी आवश्यकता थी।
1: सो बिल्कुल टारगेटेड जो है, फोकस्ड इम्प्लीमेंटेशन भी हुई है रिफॉर्म्स की। नीलू जी, अगर हम एक बहुत बड़ी जो शक्ति मानी जाती है भारत की, कि भारत एक युवा देश है, यहाँ पे डेमोग्राफिक डिविडेंड है, सो जिस तरह से जो युवा पीढ़ी है उस पर जो ध्यान दिया है सरकार ने और जिस तरह से उनका सशक्तिकरण हुआ है, आप किन पहलों को इन 12 वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं? अगर आप टॉप 2-3 हमें बताएं कि कौन सी आपको पॉलिसी डिसीजंस जो है वो सबसे आपको लगता है कि परिवर्तनकारी सिद्ध हुए हैं या हो सकते हैं।
2: देखिए, सबसे बड़ी बात है युवाओं के लिए कि युवाओं में अपनी ऊर्जा बहुत होती है, शक्ति उनकी अपनी बहुत है
1: जी।
2: उस ऊर्जा को अवसर देने की जरूरत है, उसके लिए बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको
1: जी।
2: ये पहली बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है। और समस्या ये थी कि युवाओं को अवसर नहीं मिलता था, और वो जीवन के हर फील्ड में, चाहे वो अर्थव्यवस्था के किसी भी फील्ड में चले जाएं, शिक्षा में चले जाएं, खेल में चले जाएं, हर फील्ड में वो काम कर सकते हैं, उनकी एनर्जी है और सबके अपने अपने खासियत है। तो जो उनकी रुचि है, जो वो कर सकते हैं, उसमें अवसर कैसे दिए जाएं, तो मैं ये कह सकता हूं कि युवाओं के लिए अवसर की ऐसी अनंत संभावनाओं के दरवाजे खुल गए हैं कि हर युवा जो है वो अपने अपने कौशल के विकास में, अपने अपने क्षेत्र में जिसमें करना चाहता है वो कर रहा है। और इसलिए आप देखें, खेल हो, शिक्षा हो, चाहे वो स्वरोजगार हो, चाहे वो साइंटिफिक चीजें डेवलपमेंट हो, नई टेक्नोलॉजी हो, जो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है, आईटी से रिलेटेड है, आप युवाओं को

0: देखेंगे पूरी दुनिया में छा रहे हैं भारत के युवा। इसमें दो तीन चीजें महत्वपूर्ण हैं जो देखने की बात है कि जैसे युवाओं के लिए अवसर की जब मैं बात करता हूं तो पहले मेडिकल की सीटें जो थी अगर MBBS के देख लें तो 55-56 हजार की होती थी। 140 करोड़ के देश में केवल 56 हजार MBBS आप बना रहे थे, आज वो 1,25,000 की सीटें हो गई हैं, डबल से भी ज्यादा हो गई हैं। जो पोस्ट ग्रेजुएट थी वो लगभग 30-32 हजार के आसपास थी, वो लगभग 65-70 हजार हो गई, डबल से ज्यादा वहां भी हुई है। ये यूथ पहले बाहर जाता था, यूक्रेन से कर रहा है, चीन से कर रहा है, नेपाल से कर रहा है, वहां जो यूक्रेन की आपदा में कैसे फंस गए थे सब देख रहे हैं, MBBS कर रहे थे, इंजीनियरिंग कर रहे थे। वैसे यूनिवर्सिटीज जो हैं, मेडिकल कॉलेजों की संख्या जो है सीटें बढ़ी हैं, तो मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ी है, वो लगभग 380 के आसपास की आजादी के बाद 2014 तक खोली गई थी, वो लगभग 750 के आसपास हो गई है। 50-60 और मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, जो सीटें जो है MBBS की वो 50,000 और बढ़ने वाली है। ये युवाओं को अवसर दिया देश के भीतर कि आप डॉक्टर बनना चाहते आपके लिए है। ऐसे यूनिवर्सिटीज, क्योंकि यूनिवर्सिटीज में एडमिशन आप देखते थे कितना मारामारी है, एडमिशन नहीं मिलता था, लोग जो हैं वो ओपन स्कूलिंग करते थे। ओपन स्कूलिंग अभी भी खुला है और वो एक बढ़िया विकल्प है कि उसमें हम कैसे कर सकते हैं, क्या हम और कोई काम करते हुए भी हम ओपन स्कूलिंग से कोई शिक्षा ले सकते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटीज की संख्या लगभग 800 से बढ़ करके और 1300-1400 हो गई है, वो डबल हो गई है, ये तो उन्हीं के लिए हुआ है। और खेल में प्रतिभाओं को निखारने के लिए सरकार ने पैसे दिए हैं, जो स्कीमें लाई हैं, जो युवा खेल जो प्रतिभाएं हैं उनको कैसे ट्रेनिंग दी जा रही है। तो आप देखें कि ओलंपिक खेल हो, चाहे एशियाड खेल हो, चाहे कोई भी खेल हो, जो भारतीय युवा जो कहा जाता था कि खेलों के लिए भारत में युवाओं का जो शारीरिक संरचना है वो ऐसे खेलों में कंपटीशन के लिए नहीं है, वो कहीं ना कहीं कम है, वो गलत थी बात, वो कहा जाता था।
1: और ये अपॉर्चुनिटी दी खेलो इंडिया जैसे आयोजनों के,
0: खेलो इंडिया वही मैं कह रहा हूँ, खेलो इंडिया आयोजन वो तो एक आयोजन है, लेकिन आप जो साई के सेंटर्स हैं, जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो सेंटर्स हैं, वहां पे युवाओं पे जो इन्वेस्ट किया जा रहा है, उनको जो ट्रेनिंग दी जा रही है, उन पे जो खर्च हो रहे हैं, इंटरनेशनल कोचेज अगर युवा को अच्छा कर रहा है, ओलंपिक के और एशियाड के लायक कर रहा हो, तो जर्मनी हो चाहे कहीं, वो सरकार के खर्चे पे ट्रेनिंग हो रही है। तो ये एक बड़ा अवसर जो है युवाओं के लिए है। निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि सारे युवाओं को जो है वो सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है, सारे युवा इस तरफ नहीं जाएंगे, तो वोकेशनल स्टडीज का जो है एक बड़ा उन्होंने किया है ट्रेनिंग, और जो ITI हमारा जो ट्रेनिंग का जो था उसका मॉड्यूल को पूरा चेंज किया है। पहले युवाओं को होता था कि वहीं पे है ITI करो, जो कोर्सेज है वही करो, वो सब पुराने कोर्सेज हो गए, अब उसको रीडिजाइन किया जा रहा है कि हर डिस्ट्रिक्ट में अगर ITI है तो उस डिस्ट्रिक्ट में कौन से उद्योग है, वहां कहां प्रशिक्षित युवाओं की मांग है, तो ऐसे वहां पे उसी लेवल पे उनको ट्रेनिंग दें, वहां फैसिलिटीज दें। अब कितने ट्रेनर हैं, किस किस फील्ड में हैं, ये नहीं पता था, अब सरकार एक नया बना रही है डायरेक्टरी जिसमें कि किस फील्ड के कितने अच्छे ट्रेनर हमारे कहां कहां हैं, कहां कहां गैप है, कहां क्या डिमांड है, दे सकते हैं, तो एक बड़ा चीज है। और सबसे बड़ी चीज जो है वो सबसे बड़ी चीज जो सबसे ऊपर जाती है वो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वो तो बिल्कुल विशुद्ध युवाओं के लिए है
1: और बदलते परिवेश के अनुसार जो जरूरतें हैं उसके अनुकूल है।
0: उसने जो 10+2+3+2 का जो पूरा का पूरा शिक्षा मॉडल था उसका शिकंजे से युवाओं को मुक्त कर दिया है कि आपको 12th करना है, फिर 3 साल जो है आपको BA करना है, फिर 2 साल PG करना है, फिर MPhil करना है, ये करना है, उसके बाद कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना है, अगर बीच में आपकी पढ़ाई छूट गई तो छूट गई, आपकी सारी मेहनत खत्म। अब उसमें बिल्कुल फ्लेक्सी कर दिया है कि क्रेडिट सिस्टम होगा, आपने 1 साल पढ़ा, 1 साल के बाद आपकी जरूरत पड़ गई, घर में कोई समस्या हो गई, कुछ कहीं नौकरी आपको करनी पड़ रही है, या आपको कहीं कोई अच्छी नौकरी मिल गई, आप वहां चले गए, आपको लगा कि वो पढ़ लेते तो मेरा हो जाता, तो जो आपने 1 साल पढ़ा हो, 2 साल पढ़ा हो, वो आपके क्रेडिट में है, वो आप कर सकते हैं। जो सिलेबस चुनने में जो था, जो समस्याएं थी कि बच्चा क्या करेगा, साइंस लेगा तो बायोलॉजी लेगा, केमिस्ट्री लेगा, जब वो कहा होता मैथमेटिक्स लेगा, फिजिक्स लेगा, मतलब एक था कि आप सेट हैं उसी में हैं। अब कोई बच्चा जो है वो हिस्ट्री भी पढ़ना चाहता है और मैथमेटिक्स भी अच्छा हो, वो क्यों नहीं ले।
1: तो युवाओं के लिए बहुत सारे जो
0: मतलब जितने शिकंजे थे, जो अनंत संभावनाएं, जो अवसर उसके युवाओं के लिए है, वो अवसर के दरवाजे सरकार ने खोले हैं।
1: बिल्कुल,
0: कि आप जो करना चाहे करो, युवाओं में इतनी ऊर्जा है कि वो बाकी सब कुछ कर लेंगे, उनको करने के लिए आपको कुछ सपोर्ट की जरूरत नहीं है, केवल अवसर देने की जरूरत है। और पिछले 12 सालों में वो अवसर मैंने इतने गिनाए आपको, कि जो जो करना चाहे जहां करना चाहे, इस देश में अवसर है, आपको देश छोड़ के जाने की जरूरत
1: तो
0: नहीं।
1: सरकार का जो ये एक सोच है कि आप जॉब सीकर के बजाय जॉब क्रिएटर बने, आत्मनिर्भर उद्यमी, जिस तरह से अगर हम स्टार्टअप्स की अगर हम जब

0: स्टैटिस्टिक्स देखते हैं कि 350 स्टार्टअप्स थे 2014 में, और अब वो बढ़कर जो संख्या है 2.2 लाख हो गई है। आपको लगता है कि ये जो एक इनोवेशन की स्पिरिट, एंटरप्रेन्योरशिप की स्पिरिट, इसको बहुत बढ़ावा दिया गया है इन 12 वर्षों में?
1: बिल्कुल निश्चित रूप से। स्टार्टअप्स जब शुरू शुरू आया था तो लोग कह रहे थे कि भाई युवाओं को नौकरी चाहिए, स्टार्टअप में क्या कर लेंगे, कैसे कर लेंगे। अब आप देखें कि उसमें जो स्टार्टअप्स हैं वो अब बड़े बड़े बन रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के रूप में हो रहे हैं। 8,000-10,000 करोड़ का उनका टर्नओवर वो तत्काल हो रहा है। 150-200 स्टार्टअप ऐसे हो गए हैं जिनका टर्नओवर जो आप देखें तो अच्छी अच्छी कंपनियों से बेहतर है। वो तो वो एक अवसर, और स्टार्टअप में सरकार का जो मदद है
0: स्टार्टअप
1: इंडिया द्वारा कि उसमें आपको ये टैक्स में छूट है, और इसमें आपके जो पुराने इंस्टीट्यूट हैं, IIT हैं, IIM, उन्होंने जिस ढंग से उनको आगे बढ़ाया है, वहां उनके टीचर जो मेंटोर हैं, वहां पे एक इकोसिस्टम बन रहा है, वो चल रहा है। और अगर स्टार्टअप में देखेंगे तो टेक के क्षेत्र में जो कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में ज्यादातर वो काम कर रहे हैं, बाकी तो नए नए जो वेंचर्स उसमें भी आ रहे हैं, उसमें आप देखेंगे कि पेटेंट की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी। यानी कि जो हमारे यूथ जो कहीं रिसर्च में लगे हुए हैं, कुछ नई चीज ढूंढ रहे हैं, पहले पेटेंट नहीं होता था, पूरा पेटेंट के जो रजिस्ट्री जो पूरे मैकेनिज्म है वो चेंज किया जा रहा है। लाखों यूथ जो है वो अब नए नए पेटेंट के लिए हर साल लाखों अप्लाई हो रहे हैं, और पेटेंट मिल रहा है। पेटेंट मिलने का मतलब यह है कि बिल्कुल नई चीज, नए इनोवेशन करके आप दे रहे हैं। तो ये हर क्षेत्र में यूथ के लिए उन्होंने, चाहे खेल हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे रोजगार हो, अगर आप रोजगार देने वाला स्टार्टअप जैसे अगर आप उद्यमी बनना चाहते हैं तो वो अवसर भी है जो पहले नहीं मिलता था।
0: बिल्कुल। और अगर हम तीसरे स्तंभ की बात करें किसानों की, तो किसानों के सशक्तिकरण का रंजन जी जो एक क्रांतिकारी हमने बदलाव देखा है प्रोडक्शन फिगर्स में, अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो हम टॉप 10 एक्सपोर्टर्स ऑफ द वर्ल्ड में अब शामिल हो गए एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स, और जिस तरह से नई मिनिस्ट्रीज का गठन हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, एलाइड सेक्टर्स के लिए एक अलग मिनिस्ट्री, किसानों के सशक्तिकरण को आप कैसे देखते हैं पिछले 12 सालों में, और इसका आधुनिकीकरण जो हुआ है उसके प्रमुख पहलू आप क्या मानते हैं?
1: देखिए, उसमें पहले आपको समझना पड़ेगा कि जब खेती में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है, एक तो होता है इनपुट कॉस्ट, कि आप जब खेती करने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या उसमें लगाना पड़ेगा, और अगर खराब हो गई फसल, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, कुछ भी हो गया, आपदा आ गई, तो आपका क्या होगा। पहले जो समस्या थी कि इनपुट कॉस्ट की तुलना में जो हम मिनिमम जो गारंटी सरकार देती भी थी कि हम खरीदेंगे, तो कुछ फसलों पे थी, चावल था, गेहूं था, एक दो फसलें और थी, वो नहीं थी कि ये हम आपको खरीदेंगे। अगर आप देखेंगे 12 सालों में तो जो उर्वरक है, जो फर्टिलाइजर है, कीमत उसकी लगभग सेम है, 12 साल में नहीं बढ़ा है, सरकार को सब्सिडी बढ़ रही है, लेकिन वो लगभग 250-300 रुपए की बोरी जो 45 किलो की जो यूरिया की थी आज भी वही है,
0: बहुत बड़ा समर्थन है।
1: इसका मतलब कि जो कॉस्ट आपका है वो उर्वरक वाला वो नहीं बढ़ा है, वो सेम है। दूसरा कि पूरे देश में बिजली जो है वो 24 घंटे उपलब्ध है लगभग, मतलब ग्रामीण इलाकों में कहते हैं कि एवरेज 22-23 घंटे बिजली आज है, पहले नहीं होती। या और किसान अधिकांश जो राज्य है उसमें किसानों की बिजली फ्री है, तो सिंचाई के लिए आपको अलग से कोई कॉस्ट नहीं आ रहा है, और आपके खाद्यान्न की कीमत अगर आप देखेंगे तो कुछ बढ़ा ही है। दूसरी, इससे भी बड़ी बात यह है कि सरकार जो सहायता दे रही है 2,000 रुपए का,
0: 6,000 प्रति वर्ष, 3 इंस्टॉलमेंट में 2,000 के हैं,
1: तो वो उसका अगर आप समय देखेंगे कि वो उस वक्त दिया जाता है, और छोटे किसान, आपके अधिकांश जो देश में किसान हैं 12 करोड़ छोटे किसान हैं, उनके पास पैसे नहीं होते हैं, जिस वक्त उनको बुआई करनी होती है, जो खेत लगाना होता है, कुछ करना हो तो बीज खरीदने के लिए पैसे नहीं होते हैं, उनके लिए उस वक्त उनको पैसे दिए जाते हैं, वो मदद उनको दी जा रही है, किसान क्रेडिट कार्ड उनको दिया जा रहा है कि लाख रुपए तक आपका खर्च कोई करना हो तो बहुत सस्ते में, कुछ नहीं देना है आपको, आप उसमें खर्च कर सकते हैं। जो फिशरीज का जो अलग से मिनिस्ट्री बना करके उनका जो ब्लू रेवोल्यूशन जो उनका किया है और जो एक्सपोर्ट बढ़ा है, वो आप देखिए हॉर्टिकल्चर में जो भारत का एक्सपोर्ट जो मेनली जो आपको दिख रहा है एक्सपोर्ट जो कृषि क्षेत्र में, वो उसमें दिख रहा है, क्योंकि उसमें 10-12% का ग्रोथ है, वो एक बड़ी ताकत के रूप में भारत उभर रहा है। तो किसान एज ए होल कह लें आप, बड़ा परिवर्तन हुआ है। और किसान अगर आप कहते हैं ना सिर्फ, तो किसान नहीं होता है सिर्फ, उसी घर में महिलाएं भी, महिलाओं का जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बन रहा है,
0: जैसे अभी सर्जना जी बता रही
1: हैं, तो वो भी तो वहीं बन रही हैं, जो 10 करोड़ महिलाएं हैं वो भी तो किसान परिवारों से ही आती हैं, वो किसान परिवार सशक्त हो रहा है, जो मार्केट

0: मार्केट का डेवलपमेंट, जो आपकी सड़कें बन रही हैं, तो उन सड़कों के बनने से किसान का जो प्रोडक्ट है वो मार्केट तक आसानी से पहुंच रहा है। और आपने आज 20-25 फसलें ऐसी हो गई हैं जिनकी गारंटी सरकार दे रही है खरीदने के लिए कि हम उसको खरीदेंगे, है ना, आप उपजाओ और गारंटी है इस कीमत पे हम करेंगे। कई राज्य सरकारों ने इधर भावांतरण योजना शुरू कर दी है कि अगर आपको मार्केट से कम कीमत आपको बेचना पड़ रहा है, मार्केट नहीं बेच रहे हैं, तो वो उस कीमत का पैसा हम आपको देंगे, यानी किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा। तो जो अन्नदाता है उसके लिए उन्होंने खोला है, सारी चीजें व्यवस्था हो रही है। जो मतलब जो सीधे से कहां से नहीं जुड़ा है, किसान से लगता है कि जुड़ा हुआ नहीं है। अब मान ले कि जो सरोवर बनाने का था कि जीर्णोद्धार करना है, तमाम तालाबों का सब भर गए थे, सब कुछ है, वो किसका पानी का लेवल बढ़ रहा है, वहां सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हो रही है, किसको जा रहा है फायदा, ये कई चीजें सीधे उनसे जुड़ी हुई नहीं है। जो ग्रामीण इलाकों में जो गरीब परिवार हैं उनका जो फ्री में इलाज जो 5 लाख का हो रहा है, उसमें बहुत सारे परिवार ऐसे गरीब हैं जो आयुष्मान भारत योजना के तहत, वो किसान परिवार से आते हैं। जो 55-60 करोड़ लोग हैं वो कहां से 55-60 करोड़ लोग हैं, बहुत सारे वहां से भी हैं। इसीलिए किसानों पे जो इनपुट कॉस्ट है, उनके जो जीवन के लिए जरूरी चीजें हैं, जो खर्चे हैं, सरकार ने उसे कम किया है, उनकी उत्पादकता बढ़ाई है, और अब कोऑपरेशन मिनिस्ट्री अलग से बना करके उनका कैसे वो जो फार्मर का जो प्राथमिक जो है वो संघ बने, कोऑपरेटिव बने, उसकी 1 लाख के आसपास हो गया है, उसमें है कि 2-3 लाख कोऑपरेटिव बनाने हैं। कोऑपरेटिव बना करके सिर्फ कोऑपरेटिव नहीं करना है, इंटरनेशनल कैसे उनका ऑर्गेनिक खेती करें, कैसे वो विदेश में एक्सपोर्ट हो, इसके लिए अलग से कोऑपरेटिव बना दिया है।
1: बिल्कुल,
0: तो हर तरफ से किसानों को सशक्त कर, किसान सशक्त मतलब देश सशक्त।
1: बिल्कुल सर्जना जी, अगर आपके पास आए, जैसा कि अभी नीलू जी कह रहे थे कि सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है, जो सारे चारों स्तंभ हैं ये भी आपस में जुड़े हुए हैं। अगर हम खासतौर से वंचितों की बात करें, जो इन्हें मार्जिनलाइज्ड कहते हैं या आर्थिक रूप से कमजोर, इनके बारे में थोड़ा सा बताएं कि इनके जैसे जो जनजातीय समूह के लिए जो स्टेप्स उठाए गए हैं या जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए स्टेप्स उठाए गए हैं, ये मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए आप हमें बताएं कि किस तरह के परिवर्तनकारी उपाय हुए हैं।
2: वर्ग में तो एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। वो ऐसे आया है कि एक तो सबसे पहले उस वर्ग में आत्मसम्मान, आत्म गौरव की भावना पैदा करना, जो हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, जिनको पहले आदिवासी बोला जाता है, अभी वनवास जनजाति जैसे हैं, तो इनके लिए आप देखिए कि जो उनके हीरो रहे हैं, बिरसा मुंडा हैं और बहुत सारे, उन सबको इन्होंने निकाला और जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है बिरसा मुंडा जी के नाम से। फिर आदि मेले लगने शुरू हुए हैं और एकलव्य स्कूल बनाए गए हैं इन बच्चों के लिए, उसका नाम है एकलव्य स्कूल, कि जितने ट्राइबल बच्चे हैं, क्योंकि अगर वो रेगुलर स्कूल में नहीं जा पा रहे तो आप उनको बोर्डिंग स्कूल है ये, उसमें आप उनको पूरी तरह से एक आधुनिक शिक्षा भी दे रहे हैं, आप उनको शिक्षा से जोड़ रहे हैं। दूसरा, जो ट्राइबल्स हैं वो हमारे जल वन के रक्षक और संस्कृति के रक्षक सबसे ज्यादा वो हैं। हम जो पढ़े लिखे शहरी हैं, हम पर्यावरण की उतनी रक्षा नहीं कर सकते जितना वो लोग करते हैं, तो उनके लिए जो वन धन योजना है उससे बहुत लाभ है। उनको कहीं नहीं जाना, नौकरी के लिए एप्लीकेशन नहीं देना, क्योंकि उन लोगों को ये भी मालूम है कि कौन सी जड़ी बूटी का क्या असर है। उन पत्तों को हम नीलू जी या आप जंगल में जाके नहीं पहचान सकते, उनको पता है कि कौन सा फूल जब खिलेगा तो उसके बाद कब बारिश होगी, कब आंधी आएगी, तो वो लोग प्रकृति के साथ सहचर हैं प्रकृति के। ये जो मंत्रालय है, ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री है, तो ये भी आप देखिए कि वैसे तो अटल जी के समय में बना था, लेकिन अब इसमें बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। और ये खेलने में बहुत अच्छे हैं, ये हॉकी में है, स्पेशली तीरंदाजी में, कुश्ती में, तो उस पर भी ध्यान दिया गया है। इनके लिए बोर्डिंग्स खोले गए, इनके लिए कोचेस दिए गए हैं, इनके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। और जिस एरिया में जो चीज ज्यादा जो पैदावार हो रही है, अब देखिए कि जैसे मखाना बोर्ड बिहार में बनाया गया, पहले तो नहीं था। दूसरी बात, खाली मखाना बोर्ड बना देने से काम नहीं होगा, ट्रेनिंग है उनकी, फिर उनकी प्रोडक्ट की कीमत है, फिर उनकी प्रोडक्ट को देश में और विदेश में सब जगह पे उनको मंच मिले, ई कॉमर्स जिसको वो भी चला रहे हैं। अभी जब मोदी जी यात्रा पर गए, हमारे प्रधानमंत्री जी, फ्रांस, स्लोवाकिया और G7 में, तो मैं जो लिस्ट देख रही थी, आप सोचिए, उसमें वो पिछली बार मखाने लेके गए थे, इस बार वो ठेकुआ भी लेके गए। ठेकुआ भी आप मतलब,
1: हाँ, उन्होंने सम्मान दिलाया है पूरे,
2: श्री अन्न उसको नाम दिया, जिसको मोटा अनाज सब बोलते थे, अब उसको देखिए मान श्री अन्न, और सब चीजों की कीमतें भी बढ़ी है उसकी वजह से, और उसका किसान को लाभ हो रहा है। आज मखाने का

0: आप रेट देखिए बाजार में, तो वो सारा आप सोचिए कि वो लाभ किसान को जा रहा है। और दूसरा जैसा अभी नीलू जी ने कहा कि खाली विकास समग्र होना चाहिए, अगर मेरे पास प्रोडक्ट है और मैं मंडी तक ही नहीं पहुंच पाऊं, तो मेरे पास मंडी तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं है, साधन नहीं है, तो मेरी प्रोडक्ट का क्या होगा, क्योंकि ये तो पेरिशेबल आइटम जो होती है, तो उनको तुरंत बाजार चाहिए, तो ये भी बहुत सुविधा हुई है उसके लिए
1: जी।
0: और जब ये MSP की बात होती है, तो MSP अब कहा कि आप जाके किसान अपनी फसल, जरूरी नहीं कि किसी को, भाई जिसको जो कीमत दे रहा है किसान को, जितनी दे रहा है, और जिसके पास वो जाके खरीद ले,
1: हो जाता है।
0: नहीं खरीद लीजिए जाके जी, जितना जी। रेट है। तो ये विपक्ष जो कहता रहा, जो किसान आंदोलन हुआ, उन्होंने MSP की बात की, तो वो उससे चार कदम आगे चले। तो वंचित वर्ग में फिर है कि पढ़ाई है उनकी, पहले लोगों को लगता था कि अगर बेटी पैदा हो गई तो क्या होगा, अब किसी को नहीं लगता। सुकन्या समृद्धि योजना है, लड़कियों को वर्दी है, लड़कियों को सब कुछ। और दूसरा, अगर मान लीजिए अब जो असंगठित क्षेत्र था, जहां पर ये वंचित वर्ग जिसकी आप बात कर रहे हैं, क्योंकि उसके पास कोई स्किल, कोई एजुकेशन कुछ नहीं था, या उसके पास अपना पारंपरिक हुनर भी, कौशल भी नहीं है कोई, तो खैर कौशल विकास मंत्रालय भी खोला गया और कौशल विकसित किया जा रहा है, तो अगर उसके पास कुछ भी नहीं, तो वो किसी मान लो फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो ये भी सरकार ने सुनिश्चित किया, जो नए चार लेबर कोड आए हैं, कि अगर कोई असंगठित क्षेत्र में है और काम कर रहा है, स्पेशली महिलाएं हैं, तो उनका वेजेस तय कर दिए गए हैं कि आप इससे कम वेज पे बिल्कुल काम नहीं करवाओगे
1: जी।
0: तो ये आप देखिए कितनी अच्छी बात है।
1: हाँ।
0: फिर दूसरा, अगर महिला आपके यहाँ काम कर रहे हो, तो आप उसको घर पहुंचाने की व्यवस्था भी करेंगे, फैक्ट्री आपकी करेगी, तो ये भी एक अच्छी बात है। अब सैनिटरी पैड पर देखिए, लड़कियों की जो सबसे बड़ी एक समस्या होती है कि वैसे इसको कहा गया था कि ये बातचीत करने के, लेकिन ये भी एक रुपए में जन औषधि केंद्र में सैनिटरी नैपकिन मिल रहा है लड़कियों को, किशोरियों को, तो आप सोचिए महिलाओं को, तो ये भी
1: बहुत बड़ा,
0: हम इसको एक अगर देखें तो एक तरह से ये भी एक सशक्तिकरण की ओर एक बड़ा कदम है। पिंक टॉयलेट्स हैं महिलाओं के लिए, अलग से अच्छे शौचालय बनाए गए हैं, तो ये ऐसी चीजें हैं जो आपको, अगर हम किसी मैनेजमेंट स्कूल की बुक देखें तो उसमें ये चीजें नहीं दिखेंगी, लेकिन पिछले 12 साल में जो इतनी छोटी छोटी चीजों को सोच के समझ के जिनके ऊपर काम किया गया, पिछले 12 साल में जनधन खाते खोले गए, डायरेक्ट बेनिफिट उनको मिल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ उनका कौशल विकसित किया गया,
1: और एक तरह से जो हमारी ट्रेडिशन है हमारे देश की, वो भी अलाइव,
0: मतलब कि हमारी एजुकेशन पॉलिसी जो मैकॉले ने जो लाया था, उसने व्हाइट कॉलर जॉब को बहुत प्रेफरेंस दिया था, पर ये जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जो सरकार की औद्योगिक नीतियां हैं, जो MSME आप देखिए ना, MSME सेक्टर में कितनी चीजें जो महिलाएं घर में बैठे बैठे शौक शौक में बना लेती हैं, जिनको ये शौक है, जिनके पास स्किल है, अपनी दादी नानी माँ से सीखा है, तो उसके लिए भी सरकार लोन दे रही है।
1: बिल्कुल।
0: तो ये बहुत महिलाओं का सशक्तिकरण। दूसरा मैं आपसे कहूंगी कि जैसे मातृत्व वंदन है, वो योजना कितनी अच्छी है, जो मातृ शिशु रक्षा योजना है, तो ऐसी योजनाएं पहले था कि हाँ,
1: और एक्चुअली वो फिगर्स में दिखाई दे रहा है कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज जो अस्पतालों में अब हो रही हैं, उनका संख्या इतनी बढ़ गई है, 98% पे पहुंच गई है, और भी जो मॉर्टेलिटी रेट
0: जो
1: है,
0: बेसिक मेरी जरूरत है वंचित वर्ग की, अगर हम बात करते हैं कि रोटी कपड़ा और मकान
1: जी,
0: उनको प्रधानमंत्री आवास योजना में घर दिया जा रहा है
1: जी, जी।
0: ठीक है, उनको जो राशन दिया जाता है, एक BPL जो है उससे बिलो में जो राशन मिलता है, ठीक है वो आज नहीं तो कल कमाने लगेगा, वो भी बाकी समाज के साथ पेश मिलेगा, लेकिन जब उसको अपनी बेसिक जरूरतें पूरी हो रही हैं, तो उसको उसके लिए नहीं स्ट्रगल करना, इसलिए उसका जीवन स्तर आगे बढ़ा, और कितने करोड़ लोग नीलू जी गरीबी रेखा से ऊपर उठे,
2: 25 करोड़
0: गरीबी रेखा से ऊपर उठे, और डिजिटल पेमेंट देखिए आप, सारी दुनिया आज हमसे सीखना चाहती है भारत,
1: और ये जो डिजिटलाइजेशन की आप बात कर रही हैं, वो पूरे देश में है,
0: सब्जी वाला भी कहता है जी यहाँ पे पेमेंट कर दो, जो फूल बेच रहा है वो भी कहता है, गोलगप्पे वाला
1: जी,
0: टिक्की वाला,
1: व्यापक सशक्तिकरण है। अगर हम सामाजिक न्याय की बात करें, समावेशी विकास की बात करें, तो कुछ ऐसे आंकड़े हैं, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 71% बेनिफिशियरीज जो है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC फार्मर्स हैं, और मुद्रा योजना की अगर हम बात करें या जनधन योजना की बात करें, तो 70% से अधिक जो अकाउंट्स हैं वो महिलाओं के हैं। सो आपको लगता है कि जो स्कीम्स हैं वो अच्छी भी हैं, लेकिन वो ज्यादा जरूरी है कि वो इम्प्लीमेंट बहुत कहें कि सिंसियरिटी से हुई है।
2: निश्चित रूप से मैं ये अनुभव अपना बताता हूँ, जहां मैं भी गया था, पिछले दिनों जगदलपुर गया था, जगदलपुर का नाम सुनते ही बस्तर सोचते हैं लोग, नक्सली प्रभावित था, नक्सली इलाके में कोई

0: सरकारी कर्मचारी जा ही नहीं सकता था, स्कूल जला दिए थे, जो जंगल में जो लोग थे उनको सारी चीजें नहीं मिलती थी। अब वहां के जो प्रोडक्ट हैं, जो वहां ट्रेनिंग दी जा रही थी, और बिल्कुल एक संस्थागत रूप में सब कुछ लाया जा रहा है वहां पे, कि जो कैंप लगे थे, नक्सल समस्या खत्म हो गई, तो जो सुरक्षा बलों के कैंप थे उसको सेवा केंद्र में बदला जा रहा है। अमित शाह जो गृह मंत्री हैं वो खुद हमारे साथ थे, उनके साथ मैं भी था। वहां मैंने देखा कि जो जंगल के प्रोडक्ट हैं, से इमली बहुत होती है, अब इमली वहां पे जो तोड़ा, अब वो बिचौलिए सब खाते थे और जैसे थे जाता था, अब वो मशीनें लगी हैं, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है कि इमली को कैसे आप पैकेजिंग करो, 500 500 ग्राम के, 1 किलो के छोटे पैकेजिंग बिल्कुल एकदम उसको, और उसके बीज हटने चाहिए, उसका ये होना चाहिए, और बिल्कुल शुद्ध ऑर्गेनिक बिना किसी केमिकल के, और उसकी बहुत डिमांड है। एक वहां महुआ बहुत होता है, फ्री में चुनते हैं। अब महुआ और बाकी जो श्री अन्न है मिला करके इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बन रहे हैं
1: प्रोडक्ट बन
0: उसके,
1: रहे,
0: तो मार्केटिंग देखिए एक सोच का अंतर आया है,
1: एक अवेयरनेस क्रिएट हुई है।
2: बाजरा
0: अवेयरनेस
2: सोचिए,
0: नहीं,
2: कोई खाना
0: सोच
2: नहीं
0: का
2: चाहते
0: अंतर
2: हम।
0: यह है कि जब देश आजाद हुआ था तो हमने ये मान लिया था कि ये तो ट्राइब्स हैं, ये जैसे हैं वैसे ही खुश हैं, इनमें हमें छेड़छाड़ नहीं करनी है, इनको हमारे डेवलपमेंट जो, इनको हमारे स्कूल नहीं चाहिए, इनको हमारी बिल्डिंग नहीं चाहिए, इनको गाड़ी नहीं चाहिए, इनको जहाज नहीं चाहिए, इनको कुछ नहीं चाहिए, इनको ये जंगल में ही खुश है। अब आपने उनको छोड़ दिया तो उस जंगल में नक्सली घुस गए। अब जो चेंज आया है कि सारी सुविधाएं वो जंगल में रहे, जहां है जैसे जी रहे हैं रहे, लेकिन सारी सुविधाएं हम पहुंचाएं, और उनकी जो चीजें हैं वो अंतरराष्ट्रीय मार्केट तक भी जाए, बाकी जगह भी जाए,
1: विकास
2: और उनके बच्चे
1: एक पढ़े भी,
2: देखते
1: अगर वो चाहे शिक्षा वहां पे पहुंची है।
0: एकलव्य स्कूल का उन्होंने नाम लिया कि आदिवासी
1: अच्छा,
0: बच्चों
1: आप जो
0: के।
1: सोच की बात कर रहे हैं नीलू जी, यहाँ पे मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि जो टर्मिनोलॉजी भी यूज की गई है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, कितनी खूबसूरत है कि रिकॉग्नाइज कर रही है सरकार की एस्पिरेशंस है उन लोगों की, और उनको पूरा करने के लिए ये पॉलिसी मेजर्स उठाए जा रहे
0: वो
1: हैं।
0: यही है कि जब आप सिंसियरली देखते हो कि जिले हैं तो कौन कौन से जिले देश में जो है वो पिछड़े, पहले होता था पिछड़े राज्य की बात, लेकिन
1: जिसको
0: अगर
1: भी
0: आप
1: नाम
0: देखोगे
1: बोलते हैं।
0: केरल में भी तो केरल कहें कि वहां बहुत साक्षरता है, वहां महिलाओं का सशक्तिकरण है, ये है, तमाम चीजें हैं, लेकिन वहां भी कुछ जिले जो है पीछे रह जाते हैं। और जब बिल्कुल आप पिछले जोखोगे छत्तीसगढ़ का, तो छत्तीसगढ़ के कुछ जिले बहुत अच्छे हैं, तो जो जिले पीछे छूट गए हैं वो किन किन मापदंडों में छूटे हैं, वहां क्या करने की जरूरत है। अब वो जब हो गया तो जिले के भीतर ब्लॉक हैं, तो अब 500 ब्लॉक्स के अलग चल पड़ी है वहां पे। यानी कि जब समग्र और समेकित विकास की आप बात सोचते हो, कि अंत्योदय जो उन्होंने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय जी का था कि कोई छूटे ना पीछे, ये जब आपकी सोच होती है तो जितने लोग छूटे हुए हैं सबको आप चुनते हो, क्यों छूट गया, क्या कमी है, क्या क्या हम लगाएं कि यहाँ पे आ जाए, वो चीजें हो रही है।
1: सर्जना जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगी?
3: देखिए, मुझे जो सबसे अच्छा दो तीन चीजें लगती हैं, एक है विरासत के साथ विकास,
1: जी
3: जो स्लोगन है वो बहुत बढ़िया लगता है मुझे, कि हम अपनी परंपराओं को, अपनी ट्रेडिशंस को बचाते हुए विकास की राह पर चले। ऐसा विकास ना हो जो हमें हमारी जड़ों से अलग कर दे। तो हमारी जड़ों से जोड़ने का जो विकास है वो, ये सोच बहुत अच्छी है। अगर मैं अपनी जड़ से उखड़ कर कहीं बहुत उन्नति करती हूँ, अपने समाज से, अपने रीति रिवाज से, अपनी परंपराओं से, तो वो विकास एक दिन जाकर मुझे दिल को बहुत दुखी करेगा। लेकिन मैं अपनी जड़ों से भी जुड़ी हूँ, अपनी परंपरा से, अपनी संस्कृति से, और उसके साथ मेरा विकास हो रहा है। अब एक चीज मैं और कहना चाहूंगी कि यूनेस्को धरोहर में अब हमारी टेंजिबल एंड इनटेंजिबल कितनी सारी चीजें आ गई। आप सोचिए, हमारा गरबा, हमारी दुर्गा पूजा, हमारी दिवाली, हमारे बहुत सारी चीजें हैं जो अब यूनेस्को की लिस्ट में शामिल होगी। और एक और सोचिए, पर्यावरण की दृष्टि में रामासर, जो आर्द्र भूमि जिनको हम बोलते हैं, अब वो 100 होने वाली है, 99 तो हो ही चुकी, हो गई शायद 100 हो गई।
1: और ये सब चीजें युवाओं को भी प्रेरित करती है कि हमारा कितना,
3: रामासर लेक जो है पहले हमारे पास 13 या 14 थी, अब आप देखिए कितनी हो गई। तो ये समग्र विकास जो है ना, विद मेरे विरासत के साथ, तो ये एक बहुत 12 साल की एक उपलब्धि है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर्जना जी, नीलू जी, आप आए और आपने हमें इतनी खूबसूरती से समझाया कि जो 4 स्तंभ जो माने गए हैं वर्तमान सरकार द्वारा विकास के, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, उनके सशक्तिकरण के लिए क्या क्या किया गया है पिछले 12 सालों में, और आगे भी क्या हम उम्मीद कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद
3: सोनू जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें आमंत्रित करने के लिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत

0: अभी आप सुन रहे थे सशक्तिकरण से समृद्धि की ओर बढ़ते भारत पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार नीलू रंजन और सर्जना शर्मा। परिचर्चा का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

प्रोग्राम का आखिरी गीत पहुंच रहा है आप तक रेशमा की आवाज में, और घड़ी बता रही है कि विकास अब जाने का वक्त आ चुका है। इस उम्मीद के साथ कि आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, उनका ख्याल, जो रखते हैं आपका ख्याल। आज के लिए बस इतना ही।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। बारहवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज विश्व भर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित होगा। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा।
1: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। वहीं दिल्ली में शांति पथ, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कर्तव्य पथ, न्यू मोतीबाग, सेंट्रल पार्क और तालकटोरा गार्डन जैसे प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में विशेष योग दिवस समारोह आयोजित करेगा। इस आयोजन में लगभग 1500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। वहीं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आज श्रीनगर में डल झील के किनारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में आज INS दोनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इनमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया। बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपए जारी किए गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG 2026 की पुनः परीक्षा आज आयोजित की जाएगी। ये पुनः परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। इस पुनः परीक्षा में 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। नीट UG 2026 पुनः परीक्षा आज संयुक्त अरब अमीरात में 3 निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। पत्तनपोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि 3 भारतीय ध्वज लगे टैंकर सफलतापूर्वक हॉर्मूज जल डमरू मध्य को पार कर चुके हैं और भारत आ रहे हैं। इनमें 86,00,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। इन टैंकरों में 94 भारतीय चालक दल के सदस्य भी सवार हैं। ये तेल टैंकर देश वैभव, देश विभोर और सनमार हेराल्ड हैं। ईरान की संयुक्त सैन्य कमान ने घोषणा की है कि हॉर्मूज जल डमरू मध्य को एक बार फिर बंद कर दिया गया है। यह फैसला

ब्लेसडाउन हिल स्टेशन की वो खूबसूरत सुबह थी। पहाड़ों के खूबसूरत आंगन में चारों ओर सूरज की सुनहरी रश्मियां बिखरी हुई थी। हल्के हल्के पवन के झकोरे पेड़ों को झूला झूला रहे थे। होटल के लॉन में बैठी नंदिनी दुनिया से बेखबर किसी गहरे ख्याल में खोई थी। बीच बीच में वो पेन से पेपर पर कुछ लिखती भी जा रही थी। कभी तो उसके खूबसूरत चेहरे पर उदासी के बादल घिराते तो कभी होठों पर मुस्कान खिल जाती। वो अपनी जिंदगी के खूबसूरत लम्हों को कहानी में बुन रही थी और बीच बीच में गुनगुनाती जा रही थी।

कहानी लिखने में खोई नंदिनी को पता भी नहीं चला कि कब सूरज की सुनहरी रश्मियों को बादलों ने अपनी आगोश में ले लिया। हवाएं बावरी हो उठी और नंदिनी की कहानी के पन्ने इधर उधर उड़ने लगे। नंदिनी उड़ते पन्नों को समेटने की नाकाम कोशिश करने लगी। इसी बीच बारिश की नन्ही नन्ही बूंदे आसमान से बरस उठी। नंदिनी को ऐसा लग रहा था जैसे कागज के पन्ने नहीं बल्कि उसकी कीमती यादें बिखर रही हों। वो दौड़ दौड़ कर उन उड़ते बिखरे पन्नों को बीन रही थी। तभी अचानक दो हाथ और आगे बढ़े और कागजों को समेटने में नंदिनी की मदद करने लगे। सारे पेपर जब इकट्ठे हो चुके तो नंदिनी ने सुकून की गहरी सांस लेकर उस अजनबी चेहरे की ओर देखा जिसके हाथ उसकी सहायता कर रहे थे। वो नंदिनी की ही हमउम्र एक खूबसूरत महिला थी। नंदिनी ने मुस्कुराकर उस अजनबी महिला का शुक्रिया अदा किया। थैंक यू डियर, अगर आज आप ना होती तो मेरी तो सारी मेहनत ही बेकार गई होती। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं, इंसान ही तो इंसान के काम आता है, वो अजनबी महिला बोली। थोड़ी ही देर में वो दोनों महिलाएं होटल के कैफेटेरिया में बैठी कॉफी एंजॉय कर रही थी। बाहर बारिश तेज हो गई थी। कैफेटेरिया में बजती धीमी धीमी गजल नंदिनी की धड़कनों से खेलने लगी।

0: मैं आपका नाम जान सकती हूँ? उस अजनबी महिला ने पूछा तो नंदिनी के ख्यालों की तंद्रा टूटी। जी नंदिनी, और तुम्हारा? ओह सॉरी, मेरा मतलब आपका। आपका नहीं, तुम्हारा। अच्छा लग रहा है आपका इतने अपनेपन से बातें करना। वैसे मेरा नाम आरती है, बहुत प्यारा नाम है। आरती तुम कहाँ से हो?
1: जी दिल्ली से।
0: अरे मैं भी दिल्ली से ही हूँ। यहाँ घूमने आई हो ना? जी नहीं, हस्बैंड के साथ आई हूँ। उन्हें बिजनेस के सिलसिले में इधर आना था तो मैं भी साथ आ गई। और तुम? मैं अपने ख्यालों के साथ, अपनी यादों के साथ आई हूँ। अपनी जिंदगी को पन्ने पर उतारना चाहती थी तो कुछ दिन ऑफिस से छुट्टी लेकर यहाँ भीड़ भाड़ से दूर चली आई, और अब रोज सुबह लॉन में बैठकर यादों के मोती चुनती हूँ और अपनी आत्मकथा में पिरोती हूँ। क्या बात है! एक बात बताऊं, मुझे कहानियां पढ़ने का बहुत शौक है, खास तौर पर किसी की बायोग्राफी। तुम मुझे अपनी कहानी सुनाओगी ना? आरती ने बेहद अपनेपन से पूछा तो नंदिनी इनकार ना कर सकी और एक गहरी सांस लेकर बोली, बहुत लंबी और दर्द भरी कहानी है आरती, कल सुबह लॉन में मिलना, तुम्हें सब सुनाऊंगी। अभी ऑफिस के कुछ जरूरी काम करने हैं, कल मिलते हैं। ये कहती हुई नंदिनी अपने रूम की ओर बढ़ गई। आरती उसे जाती हुई देखती रही। जाने क्यों उसे आरती की कहानी से अपनी कहानी जुड़ी हुई महसूस हो रही थी, और वो सोच रही थी कि हमारी जिंदगी के ये बीतते पल, किसी का मिलना बिछड़ना, ये सुबहें ये शामें ये रातें एक कहानी ही तो कह रही हैं।

अगली सुबह होटल के लॉन में बैठी नंदिनी आरती का इंतजार कर रही थी। आरती थोड़ी देर से आई तो नंदिनी ने पूछा, बड़ी देर कर दी आरती? और तभी उसका ध्यान आरती के माथे की ओर गया। और ये तुम्हारे माथे पर चोट कैसी? तुम ठीक तो हो ना? हाँ नंदिनी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस जरा सा बाथरूम में पैर फिसल गया और ये चोट लग गई। खैर इसे छोड़ो, तुम अपनी कहानी सुनाओ ना। पता है मैं कहानी के इंतजार में रात भर ठीक से सो नहीं पाई, आरती चहकते हुए बोली। नंदिनी अब अपने अतीत के पन्ने पलटने लगी थी। वो बहुत छोटी थी जब उसके माता पिता दुनिया से चल बसे। मामा मामी ने नंदिनी को पाल पोस कर बड़ा किया। मामी ने हमेशा ही उसे बोझ समझा और उनका बर्ताव नंदिनी के प्रति हमेशा रूखा ही रहा। लेकिन नंदिनी मामा के स्नेह के सहारे सांसें ले रही थी। अभी वो 19 साल की ही हुई थी कि मामी ने जिद पकड़ ली, उसकी शादी कर दी जाए। मामी ने उसके लिए एक लड़का भी देख लिया जो उनकी ही सहेली का बेटा था, मिलिंद। नंदिनी को अच्छी तरह से याद था वो दिन जब उसने पहली बार मिलिंद को देखा। मिलिंद ने भी पहली ही नजर में नंदिनी को पसंद कर लिया। अपनों के प्यार के लिए तरसती नंदिनी को जब मिलिंद का प्यार मिला तो उसे लगा कि उसे सारी दुनिया मिल गई।

नंदिनी मिलिंद को प्यार तो करती थी, लेकिन वो अभी शादी नहीं करना चाहती थी। ये नंदिनी की किस्मत ही थी कि वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और उसका सपना था एक मशहूर लॉयर बनकर पीड़ित और असहाय लोगों को न्याय दिलाना। उसे विश्वास था कि मिलिंद उसे समझेगा और शादी के लिए जल्दी नहीं करेगा। एक शाम जब नंदिनी मिलिंद से मिली तो उसने डरते डरते अपने दिल की बात मिलिंद के सामने रख दी। नंदिनी बोली, मिलिंद मैं भी पढ़ना चाहती हूँ, मेरा सपना है लॉयर बनना, तुम्हें शादी की जल्दी तो नहीं है ना? ये सुनते ही मिलिंद के चेहरे का रंग बदल गया। वो कठोर अंदाज में बोला, क्यों, पढ़कर क्या करोगी, शादी तो हो रही है ना तुम्हारी, और वैसे भी लड़कियां तो इसीलिए पढ़ती हैं ना कि उन्हें अच्छा रिश्ता मिल जाए। देखो नंदनी, मेरे पापा का बिजनेस है जो मुझे संभालना है, और तुम्हें घर, अगर मुझसे शादी करनी है तो पढ़ाई का ख्याल दिल से निकाल दो। मेरे पेरेंट्स को ऐसी बहू चाहिए जो उनकी और मेरी सेवा कर सके और घर की देखभाल कर सके, और वैसे भी नंदिनी वकील बहू कौन चाहेगा? क्यों, नंदिनी ने सवाल किया। एक्चुअली जो वकील लड़कियां होती हैं ना, वो बात बात पर कानून की धमकी देती हैं, तो इसलिए मैं तो बिल्कुल भी तुम्हारी पढ़ाई के फेवर में नहीं हूं, लेकिन अगर तुम फिर भी जिद करोगी तो मैं तुमसे यही कहूंगा नंदिनी कि पढ़ाई और प्यार दोनों में से किसी एक को चुन लो। नंदिनी एक दोराहे पर खड़ी थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो पढ़ाई और प्यार दोनों में से किसे चुने।

अगले दिन नंदिनी ने एक फैसला कर लिया था। दरअसल संघर्ष और अकेलेपन ने उसे ये समझ दे दी थी कि उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। इसलिए बहुत सोच समझकर उसने मिलिंद से शादी के लिए इनकार कर दिया। उस दिन घर में खूब हो हल्ला मचा। मामी का गुस्सा अपनी चरम सीमा पर था। वो गुस्से में चीख रही थी और मामा से कह रही थी, देखो जी, इस लड़की को दूर कर दो मेरी आंखों के सामने से। बचपन में अपने माँ बाप को खा गई और अब मेरा घर नाश करने पर तुली है। इतना अच्छा लड़का और घर परिवार देखा था इसके लिए, लेकिन महारानी को पढ़ना है। अब मैं अपनी सहेली को क्या मुंह दिखाऊं, क्या कहूं उसे? मेरा तो सम्मान इसने मिट्टी में मिला दिया। अच्छा सिला दिया है इसने हमारी परवरिश का, जरा भी नहीं सोचा हमारे बारे में। एहसान मानना तो दूर, अपमान अलग से करवा दिया। चुप हो जाओ सरला, ये बच्ची है अभी, नासमझ है, मामा जी ने मामी को समझाने की कोशिश की। बड़ी आई बच्ची, बच्ची दिखती है ये तुम्हें? ले जाओ अपनी बच्ची को मेरी आंखों के सामने से। इससे कहो ये घर छोड़कर चली जाए, नहीं तो मैं चली जाऊंगी, देख लेना। मामी बोले जा रही थी और मामा जी खामोश खड़े थे। नंदिनी ने मामा जी को आस भरी नजरों से देखा तो मामा जी नजरें चुराकर चुपचाप वहां से चले गए। नंदिनी उस रात सो नहीं पाई, सोचती ही रही। फिर एक फैसला कर उठी, कुछ कपड़े और अपने जरूरी सामान बैग में रखे और घर से निकल गई। घर से निकलकर वो अपनी एक सहेली के पास पहुंची जो हॉस्टल में रहती थी। नंदिनी वहीं रहकर अपना किनारा तलाशने लगी।

धीरे धीरे दिन रात के पंछी उड़ने लगे और कई बरस बीत गए। नंदिनी की मेहनत रंग लाई और उसने समाज में अपना एक मकाम हासिल कर लिया। लेकिन इन सब में जो सबसे अजीब बात थी वो ये कि इस मकाम पर पहुंचकर भी नंदिनी संतुष्ट नहीं थी। इन गुजरे दिनों में ऐसा कोई भी दिन नहीं गया था जब नंदिनी को मिलिंद की याद ना आई हो। वो मिलिंद और उसके प्यार को नहीं भुला पाई थी। अक्सर जब उसे अकेलापन सताता तो उसे लगता शायद उसने गलत फैसला ले लिया था। जब भी किसी कपल को हाथों में हाथ डाले घूमते देखती तो उसके दिल में एक हूक सी उठती और वो सोचती कि काश मिलिंद की बात मानकर वो उससे शादी कर लेती तो आज वो भी इन्हीं की तरह सुखी होती, उसकी जिंदगी में भी प्यार होता, किसी का सहारा होता जिसके लिए वो बचपन से तरस रही है। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जा रही थी, मिलिंद के प्यार की तलब और उसकी यादों का साया नंदिनी के जहनो दिल पर फैलता जा रहा था।

अपना अफसाना सुनाते सुनाते नंदिनी की आंखों से आंसू बहने लगे थे। चुपचाप सुनती आरती के चेहरे पर कई रंग आ जा रहे थे। आखिर में नंदिनी बोली, आरती मैं ना बहुत पछता रही हूं, काश कि मिलिंद एक बार मुझे मिल जाए तो मैं उससे माफी मांग लूं, मैं उसे मनाऊं कि वो मेरे साथ एक नए सिरे से जिंदगी शुरू करे। काश कि एक बार, बस एक बार मेरा मिलिंद मुझे मिल जाए। नंदिनी को सुनते सुनते अब आरती चुप ना रह सकी और बोली, नंदिनी तुमने जो भी फैसला किया था बहुत अच्छा किया था। एक बार मैं भी तुम्हारी तरह ही दो राहें पर खड़ी थी और मुझे भी शादी और करियर में से किसी एक को चुनना था, लेकिन मैंने शादी को चुना और आज मैं तुमसे कहीं ज्यादा पछता रही हूं। ये मेरे माथे की चोट देख रही हो जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले तुमने मुझसे पूछा था, ये बाथरूम में गिरने की वजह से नहीं आई, ये मेरे पति ने मुझे दी है, क्योंकि कल सुबह मैं तुमसे बात करने में बिजी हो गई थी और उनके कुछ जरूरी काम करना भूल गई थी। ऐसी ना जाने कितनी चोटें मेरे तन और मन पर लगी हैं नंदिनी, जिसे मैं किसी को नहीं दिखा सकती। आज मैं अपनी पहचान ढूंढती हूं जो मुझे कहीं नहीं मिलती। मेरा बस एक ही काम रह गया है, पति की सेवा करना, उन्हें खुश रखना और बदले में जिल्लत सहना। एक एक पैसे के लिए उनका मुंह देखती हूं। मेरी अपनी कोई पसंद नापसंद नहीं है, मेरा अपना कोई फैसला भी नहीं है, हर बात के लिए बस उन पर निर्भर होकर रह गई हूं। हालांकि ऐसा सभी महिलाओं के साथ नहीं होता, कुछ की जिंदगी बहुत बेहतर भी होती है। हम दोनों में सिर्फ एक ही फर्क है नंदिनी, तुम जिसे खोकर पछता रही हो ना, मैं उसे पाकर पछता रही हूं। बोलते बोलते आरती थोड़ी रुकी, एक गहरी सांस लेकर फिर बोली, माना कि तुम अकेली हो नंदिनी, लेकिन स्वतंत्र हो, तुम्हारी अपनी एक पहचान है, अपने फैसले खुद करती हो, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती। और जहां तक खुश रहने का सवाल है ना नंदिनी, तो खुशियां किसी सहारे की मोहताज नहीं होती। जिंदगी को देखने का नजरिया बदलो, खुशी तुम्हारे साथ ही है। खुश रहने के हजार तरीके हैं और हाँ, जिंदगी अभी बाकी है। और तुमने वो गीत सुना है, जिंदगी प्यार का गीत है।

जिंदगी अपने आप में प्यार का ही गीत है नंदनी, इसे किसी और सहारे की जरूरत नहीं। आरती अभी कुछ और कहना ही चाहती थी कि अचानक उसके मोबाइल की रिंगटोन बजी और वो किसी अनजाने डर से अपने रूम की ओर भागी। आरती चली गई तो नंदनी ने देखा कि आरती अपना पर्स वहीं भूल गई है। कुछ देर इंतजार करने के बाद भी जब आरती नहीं लौटी तो नंदनी उसका पर्स लेने उसके रूम की ओर बढ़ी। नंदनी जैसे ही आरती के रूम के बाहर पहुंची तो उसने सुना कि भीतर से बहुत तेज तेज आवाजें आ रही हैं। ना चाहते हुए भी नंदनी ने दरवाजे को थोड़ा सा धक्का दिया। दरवाजा खुला तो जो शख्स सामने खड़ा था उसे देखकर नंदनी के होश उड़ गए। जी हाँ, नंदनी के सामने मिलिंद खड़ा था और आरती फर्श पर गिरी हुई थी। नंदनी आरती के पास पहुंची, उसे संभाला और अपने पर्स से विजिटिंग कार्ड निकाला। आरती को देते हुए बोली, आरती ये रहा मेरा पता, एडवोकेट दुर्गेश नंदनी। अगर तुम्हें कोई कानूनी सलाह चाहिए तो मुझे कॉल करना, और हाँ जब भी जरूरत हो बिना बताए मेरे घर चले आना। इतना कहते हुए नंदनी वापस मुड़ी और एक तीखी नजर मिलिंद पर डाली जो चेहरे पर संकोच का भाव लिए खड़ा था। नंदनी तेज तेज कदमों से अपने रूम की ओर बढ़ गई, अपना सामान पैक किया और वापस मुड़ चली दिल्ली की ओर। एक दिन नंदनी फिर अपनी कहानी को मुकम्मल कर रही थी, लेकिन अब उसका नायक मिलिंद नहीं, वो खुद अपनी कहानी की नायिका थी जिसमें नए सिरे से जीने की तमन्ना हिलोरें ले रही थी।

साथियों, तो ये थी आज की कहानी, जिंदगी अभी बाकी है। कहानी की प्रस्तुति और निर्देशन रश्मि कुकरेती का। तो अब मुझे यानी कुसुम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया। बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपए जारी किए गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज विश्व भर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा।
1: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2,500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। वहीं दिल्ली में शांति पथ, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कर्तव्य पथ, न्यू मोतीबाग, सेंट्रल पार्क और तालकटोरा गार्डन जैसे प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में विशेष योग दिवस समारोह आयोजित करेगा। इस आयोजन में लगभग 1,500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। वहीं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आज श्रीनगर में डल झील के किनारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में आज INS दोनागिरी, INS संशोधक और INS आग्रह का अनावरण करेंगे। इनमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज एक दिवसीय राजस्थान दौरे पर रहेंगे। इस दौरान श्री वैष्णव राज्य में यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और रेल संपर्क को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। श्री वैष्णव बीकानेर से अपने दौरे की शुरुआत करेंगे, जहां वे बीकानेर रेलवे स्टेशन से लालगढ़ साबरमती एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG 2026 की पुनः परीक्षा आज आयोजित की जाएगी। ये पुनः परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। इस पुनः परीक्षा में 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। नीट UG 2026 पुनः परीक्षा आज संयुक्त अरब अमीरात में 3 निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। पत्तनपोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि 3 भारतीय ध्वजवाहक टैंकर सफलतापूर्वक हॉर्मूज जल डमरू मध्य को पार कर चुके हैं और भारत आ रहे हैं। इन टैंकर में 94 भारतीय चालक दल के सदस्य भी सवार हैं। ये तेल टैंकर देश वैभव, देश विभोर और सन्मार हेराल्ड हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

वक्त हुआ है 1:10 और ठीक 57 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। गीत सुहाने, मैं हूं राखी आपके साथ।

भारती फिल्म का गाना आपने सुना? रफी और लता की आवाज में मजरूह ने इसे लिखा और संगीत दिया रोशन ने।

काला पानी फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने। इस रात पुरानी यादों की तरह कुछ पुराने गीत साथ हैं। उनकी मधुर धुनें हवा में खुलकर मन के बंद दरवाजों को धीरे धीरे खोल देती हैं। हर गीत अपने साथ कोई भूली बिसरी कहानी, कोई मीठा एहसास और किसी अपने की याद ले आता है। ऐसी रातों में लगता है जैसे समय ठहर गया हो और सुरों की छाओं में मन को एक अनकही शांति मिल गई हो। पुराने गीत केवल संगीत नहीं होते, वो बीते हुए खूबसूरत लम्हों के हमसफर बन जाते हैं।

देवदास फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज में। साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने। जिसे तू कबूल कर ले वो दुआ कहां से लाऊं। ये एक ऐसी भावना है जिससे प्रेम, समर्पण और बेबसी एक साथ छलकते हैं। मन चाहता है कि कोई ऐसी प्रार्थना मिल जाए जो सीधे उस प्रिय के दिल तक पहुंच जाए। कोई ऐसा शब्द मिल जाए जो हर दूरी और हर संकोच को मिटा दे। लेकिन कुछ रिश्ते और कुछ चाहतें इतनी अनमोल होती हैं कि उनके लिए शब्द भी कम पड़ जाते हैं।

असली नकली फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने। प्रेम जब बहुत गहरा हो जाता है तब उसकी खो जाने का भय मन में कहीं घर कर लेता है। दिल जानता है कि ये रिश्ता विश्वास और अपनेपन से बना है। फिर भी कभी कभी भविष्य की अनिश्चितताएं मन को बेचैन कर देती हैं। शायद यही प्रेम की खूबसूरती है।

सूरज फिल्म का गाना आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज़ में। इसे लिखा हसरत जयपुरी ने और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, ये सिर्फ एक गीत की पंक्ति नहीं बल्कि उस खुशी का उत्सव है जो किसी प्रिय के आने से दिल में खिल उठती है। जैसे सूनी राहों पर अचानक बहार उतर आए, जैसे मौसम में रंग और खुशबू घुल जाए, प्रिय की एक झलक से मन का हर कोना जगमगा उठता है और लगता है मानो प्रकृति भी उसके स्वागत में फूल बिछाने की तैयारी कर रही हो।

बहारों के सपने फिल्म से आपने गाना सुना लता की आवाज में। मजरूह ने इसे लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने।

जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

0: वक्त हुआ है 1:37 और ठीक 32 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर इस वक्त आप सुन रहे हैं गीत सुहाने। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
1: आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो।

एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म से आपने गाना सुना। आशा और रफी की आवाज में राजा मेहदी अली खान ने इसे लिखा और संगीत दिया ओपी नैयर ने। कुछ रिश्ते अचानक नहीं बनते, वो मुलाकातों, बातों और साझा मुस्कुराहटों के बीच चुपचाप आकार लेते हैं। हर मुलाकात दिल में एक नया एहसास छोड़ जाती है और कब अपनापन मोहब्बत में बदल जाता है इसका पता भी नहीं चलता। प्रेम अक्सर शोर से नहीं बल्कि ऐसे ही शांत और अनकहे पलों में जन्म लेता है, जब किसी का साथ आदत बन जाए और उसकी मौजूदगी दिल को सुकून देने लगे।

बहारें फिर भी आएंगी। इस फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में, अनजान ने इसे लिखा और संगीत दिया ओपी नैयर ने। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है, ये दिल की उस मासूम बेबसी का इजहार है जब किसी की मुस्कान, बातों या अदाओं का असर अचानक ही मन पर होने लगता है। दिल तो भावनाओं का घर है, वो कब किसकी ओर खिंच जाए, कब किसी की यादों में खो जाए, इसका हिसाब कहाँ रखता है।

ये रात फिर ना आएगी फिल्म से आपने गाना सुना। रफ़ी और आशा की आवाज़ में SH बिहारी ने इसे लिखा और संगीत दिया OP नैयर ने। जुदाई के पल में भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ती। जी हाँ, हमारी आस जुदाई के पल में भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ती। जब कोई अपना विदा होता है तो दिल अगली मुलाकात की आस में एक छोटा सा वादा मांग लेता है। ये वादा सिर्फ मिलने का नहीं बल्कि यादों, अपनत्व और रिश्ते की गर्माहट को बनाए रखने का होता है।

मोहब्बत इसको कहते हैं, फिल्म से यह आपने गाना सुना। रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में मजरूह ने इसे लिखा और संगीत दिया खयाम ने। वक्त हुआ है 1:56 और ठीक 56 सेकंड। अब से बस कुछ ही देर में सुनिए समाचार। समाचारों के बाद रात सुरमई मेरे यानी राखी के साथ।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के

राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया। बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपए जारी किए गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में आज INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इनमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का

वक्त हुआ है 2:10 और ठीक 57 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई, मैं हूं राखी आपके साथ।

द ग्रेट गैम्बलर फिल्म का गाना आपने सुना आशा भोसले की आवाज में। ये रात सुरमई है, आसमान पर चांद अपनी चांदनी बिखेर रहा है, तारे खामोशी से टिमटिमा रहे हैं और हवाओं में एक मधुर सी नमी खोली हुई है। ऐसी रात में दिल अचानक ही पुराने गीतों की दुनिया में खो जाता है। हर धुन कोई याद जगाती है, हर शब्द किसी अनकहे एहसास को छू जाता है। लगता है जैसे रात अपने आंचल में मोहब्बत, इंतजार और मीठी यादों की अनगिनत कहानियां समेटे बैठी हो। ये रात सुरमई है और दिल गुनगुना रहा है।

यादों की बारात फिल्म से आपने गाना सुना आशा और रफी की आवाज में। मजरूह ने इसे लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, अब उसे वापस मांगने का मन ही नहीं करता। कुछ चोरियां ऐसी होती हैं जो शिकायत नहीं मुस्कान दे जाती हैं। दिल जब किसी का हो जाए तो उसकी हर धड़कन में उसी का नाम गूंजने लगता है।

शक्ति फिल्म का गाना आपने सुना लता और किशोर की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने। कभी कभी मोहब्बत दस्तक देकर नहीं आती, वो चुपचाप दिल में उतर जाती है। ना कोई तय लम्हा याद रहता है, ना कोई खास वजह, बस किसी की बातें अच्छी लगने लगती हैं, उसकी मौजूदगी सुकून देने लगती है, और देखते ही देखते दिल उससे ऐसा जुड़ जाता है कि पता ही नहीं चलता कब एक साधारण सी मुलाकात प्यार के इकरार में बदल गई।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून

सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

वक्त हुआ है 2:32 और ठीक 32 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर रात सुरमई। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

कुर्बानी फिल्म का गाना आपने सुना, कंचन, मनहर और आनंद की आवाज़ में इंदीवर ने इसे लिखा और संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने। हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे कि तुम्हारी मुस्कान से दिन रोशन हो जाए और तुम्हारी याद से शाम महक उठे। ये चाहत किसी शोर की मोहताज नहीं, बल्कि दिल की धड़कनों में बसी एक खामोश दुआ की तरह है।

जाबाज फिल्म का गाना आपने सुना मनहर की आवाज में। इंदीवर ने इसे लिखा और संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने।

वक्त हुआ है 2:46 और ठीक 5 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस वक्त आप हैं राखी के साथ और प्रोग्राम है रात सुरमई।

एक दूजे के लिए फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर और अनूप जलोटा की आवाज में। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

वक्त हुआ है 2:52, वक्त हुआ है 2:53 और ठीक 2 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अब से कुछ ही देर में यानी ठीक 3 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 3:10 पर हमराही इंदु पांडे के साथ। तो इसी के साथ अब राखी को इजाजत दीजिए।

साहिब फिल्म का गाना आपने सुना, बप्पी लाहिड़ी और एस जानकी की आवाज में। संगीत भी इसमें बप्पी लाहिड़ी ने ही दिया है।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा के दौरान ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया।

है। इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया। बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। प्रधानमंत्री मोदी कोलकाता में आज INS दोनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इनमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय

0: होगी। प्रधानमंत्री मोदी कोलकाता में आज आईएनएस दोनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय का अनावरण करेंगे। इनमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज विश्वभर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा।
1: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। वहीं दिल्ली में शांति पथ, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कर्तव्य पथ, न्यू मोतीबाग, सेंट्रल पार्क और तालकटोरा गार्डन जैसे प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में विशेष योग दिवस समारोह आयोजित करेगा। इस आयोजन में लगभग 1500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज राजस्थान के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान श्री वैष्णव राज्य में यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और रेल संपर्क को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनः परीक्षा आज आयोजित की जा रही है। ये पुनः परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। इस पुनः परीक्षा में 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। नीट यूजी 2026 पुनः परीक्षा आज संयुक्त अरब अमीरात में 3 निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। पद्मश्री पी नारायण कुरूप के निधन से मलयालम साहित्य ने अपनी एक विशिष्ट आवाज खो दी है। वे कवि, आलोचक, व्यंग्यकार और विद्वान थे, जिन्होंने शास्त्रीय परंपराओं को समकालीन विचारों के साथ मिलाया। उनका निधन कल रात केरलम की राजधानी त्रिवेंद्रम में हुआ। फीफा विश्व कप के ग्रुप ई में जर्मनी और आइवरी कोस्ट के बीच मैच कनाडा के टोरंटो स्थित बीएमओ फील्ड में चल रहा है। अब से कुछ देर पहले ग्रुप एफ के मैच में नीदरलैंड्स ने स्वीडन को 5-1 से करारी शिकस्त दी। ये मैच अमेरिका के ह्यूस्टन में एनआरजी स्टेडियम में खेला गया। इससे पहले ब्राजील ने फिलाडेल्फिया स्टेडियम में हैती को 3-0 से हराकर फीफा विश्व कप में अपनी पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

3:10 हो चुके हैं हमारे स्टूडियो की घड़ी में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे। जब मन थक कर बैठ जाए कहीं, वो हौसलों की बात सुनाए सिर्फ और सिर्फ यहीं। सच यही है कि हर किसी को एक सच्चे हमराही की तलाश है, तो हाजिर है बंदा।

कभी सोचा है कि हम सब कहानियाँ सुनने के इतने शौकीन क्यों होते हैं? वैसे ये बात तो सच है कि हम सब एक चलती फिरती कहानी है, या यूं कहें कि एक उपन्यास का एक छोटा सा टुकड़ा बस बात करने की देरी है। तो कहानियाँ हम कई बार लिखते हैं, कहानियाँ हम कई बार कहते हैं, और कहानी कहते लिखते कई बार हम खुद कहानी हो जाते हैं। पर ये सच है कि हम सब कुछ न कुछ किसी न किसी से कहना चाहते हैं, और चलती फिरती कहानी कभी दूसरों के लिए कुछ लेकर के आती है, और कभी हम अपनी कहानी से खुद ही बहुत सारी और कहानी जोड़ के यूं ही आगे बढ़ते रहते हैं। ये है हमराही, आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पे, और हमराही हैं हम आपके साथ।

चलो ये तो हुई कहानी की बात, लेकिन रात का समय है, चांद अपनी चांदनी बिखेर रहा है और इसके लिए आपको देखना पड़ेगा बाहर। लेकिन इस खूबसूरत रात में एक कमी महसूस होती है कभी कभी, और वो है तुम्हारी कमी। हर तारा जैसे उसका नाम लिखता हो, हर खामोशी जैसे उसकी आवाज़ आती हो। कभी साथ बैठकर जो सपने हमने देखे थे, आज वही यादें रात भर जगाती हैं। और कुछ ऐसे सीन या कोई ऐसी चीज़ है जो हमेशा हमें याद आती है। हमराही, तुम्हारी याद आज भी उतनी ही खास है जितनी तब थी।

बहुत सारी ऐसी अनसुनी बातें, बहुत सारी खामोशियां जो हमें लगता है कि बहुत कुछ कह रही हैं, और उन्हीं में से एक है कुछ यादें, बड़ी अजीब सी, जो दिखाई नहीं देती, जिसे हम छू भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी बड़ा गहरा असर रखती हैं सब कुछ। कुछ यादें चेहरे पर मुस्कान लाती हैं तो कुछ आंखें नम कर जाती हैं, कभी किसी की हंसी याद आती है तो कभी किसी की बातें। शायद वो पल कभी दोबारा लौट के तो नहीं आएगा। समय आगे बढ़ता जाता है, हालात बदलते हैं, लोग बदलते हैं, लेकिन कुछ तो है जो वहीं का वहीं ठहरा रहता है। शायद वो यात्रा, शायद वो पल जब लगता था कि हाँ, हम सब कुछ कर सकते हैं, चांद के उस पार भी बड़े आराम से जा सकते हैं।

अगर तैयार हैं तो फिर आ जाइए, शामिल हो जाइए हमारे साथ हमराही में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे। अगर हम बात करें रिश्तों की, तो रिश्तों की उम्र कैलेंडर से तो नापी नहीं जाती, वो तो उन बातों से बनती है जो कभी कही नहीं गई। अनकही बातों की एक लड़ी बनती है, और जब मोहब्बत थक जाती है तब हमें कई बार ऐसा लगता है कि शायद वो एक नई कहानी बन जाती है। दो लोग एक घर में तो रहते हैं लेकिन अलग अलग कमरों में। खामोशी तब बोलने लगती है, एक ठहराव,

एक अधूरापन, एक सवाल जिसे हम हमेशा खोजा करते हैं रिश्तों की धूल भरी अलमारी में, आखिर हो क्या जाता है? ये सब चीज़ें कभी कभी जादू लगती है, या फिर ऐसा लगता है कि उसके ऊपर कुछ वर्कआउट हमको करना चाहिए था, है ना?

और जो ये शुरुआत हुई उसके बाद की कहानी, उसके बाद की कहानी कई बार हम यूं ही कह सकते हैं कि पहले मैं थी, फिर हम हुए, और उसके बाद हम किसी तीसरे को ढूंढने लगते हैं, और ये लगता है कि कोई तीसरा आएगा तो शायद हमारी कहानी थोड़ी सी और आगे बढ़ेगी। वो रात भी बाकी रातों जैसी ही होगी जैसी कि हमने सोचा था, लेकिन हमारी सोच और सच्चाई दोनों काफ़ी अलग हो जाते हैं, बहुत अलग। कुछ घर बहुत बड़े होते हैं लेकिन उसमें रहने वालों के हिस्से में आसमान थोड़ा सा छोटा पड़ जाता है। कई सारे घर में दीवारें, साजो सामान, सारी सुविधाएं होती हैं, लेकिन अगर रिश्तों की आहट की बात करें तो वो कभी कभी ढूंढना पड़ता है। कहाँ है, कैसे है, क्यों है, कब है, कई सारे सवाल हमारे पास।

चलो हमने साजे दिल छेड़ भी दिया, चलो ये माना कि इस रात की तन्हाई में तुम्हें याद भी कर लिया, चलो ये भी माना कि जो मैंने ना ना ना कहा था वो सब शायद थोड़ा और जोर से तुम पूछते तो वो हाँ भी हो सकता था, लेकिन जो समय है उसकी बात ही निराली होती है, क्योंकि जब वो याद आता है तो फिर उसके पीछे बहुत सारी और कहानियाँ याद आ जाती हैं, और शायद हमरा ही होने का जो एक हमें एहसास होता है वो भी शायद लगने लगता है, है ना। आकाशवाणी दिल्ली की FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे हमरा ही है ये।

कई बार तो यूं भी लगता है कि जिंदगी की इतनी भाग दौड़ में अगर कुछ याद आ गया, कुछ याद रह गया, कुछ याद बार बार आता जा रहा है, तो शायद ये भी एक बहुत अच्छी बात है ना? क्योंकि एक कोना तो है जो सिर्फ हमारे लिए है, और वो याद जैसे कि कभी चाय के कप से उठती हुई भाप हो, जैसे कि कभी किसी पुराने गीत की धुन हो, या फिर किसी रात की खामोशी हो, वो सब कुछ याद आता है। लोग कहते हैं कि समय सब कुछ भुला देता है, लेकिन कुछ रिश्ते भूलने के लिए नहीं होते, उन्हें बस दिल के एक कोने में संभाल कर रखा जाता है। आज भी जब हम चांद को देखते हैं तो यकीन बताइएगा कि बहुत सारी कहानियां याद नहीं आती कि हाँ, ये चांद जहां आज हमें दिख रहा है, किसी के आसमान में कहीं और भी तो नजर आ रहा होगा, और लगता होगा कि शायद किसी को हमारी याद भी आ जाए, क्योंकि जो दिल के तार हैं वो अगर कोई छेड़ गया है तो फिर उसको हम कैसे गुनगुनाएंगे।

0: अब तो बात बात पर दिल भी रूठने लगा। दिल का क्या कीजिए हुजूर, वो अपना होकर भी कई बार अपना नहीं रहता है।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पे ये है हमराही। मैं हूँ आपके साथ, वही जिसको आप हमराही कहते हैं, क्योंकि जिंदगी का सफर कहते तो यही है कि अकेले तो तय नहीं किया जा सकता, हमराही की जरूरत पड़ती है। और हमारे स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है 3:48 और ठीक 50 सेकेंड।

उसकी आंखों में नशा, बाजू में ताकत और दिल में हिम्मत थी। बिजली की तरह ना

0: कुछ न रहा।
1: और वो टूटन, और वो ऐसी आवाज उस टूटन की शायद हमेशा हमारे साथ रहती है। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पे हमराही आपके साथ है। हमराही वो नहीं जो सिर्फ साथ चले, बल्कि वो है जो खामोशी को समझे, थकान में हौसला बने और मुश्किल रास्तों में उम्मीद दे। लेकिन हर किसी का हमराही हमेशा ऐसा ही एहसास दिलाए, ये भी तो नहीं हो सकता। कुछ लोग कुछ दूर तक साथ चलकर पूरी जिंदगी की याद बन जाते हैं, और कुछ लोग जिंदगी भर हमारे साथ रहते हैं लेकिन फिर भी याद में शायद वो उतने शामिल नहीं रह पाते जितनी की होनी चाहिए। इसलिए हमराही बहुत ज़रूरी है। हमें प्यार, अपनापन, भरोसा और बिछड़ने के बाद भी यादों की अहमियत सिखा जाता है। पर हम बार बार यही कहते हैं अपने आप से कि पीछे मुड़ मुड़ के ना देखो तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन कोई एक ऐसा पल ज़रूर होता है जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। बारहवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज विश्व भर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा।
1: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। वहीं दिल्ली में शांति पथ, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कर्तव्य पथ, न्यू मोतीबाग, सेंट्रल पार्क और तालकटोरा गार्डन जैसे प्रमुख सार्वजनिक

0: स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में विशेष योग दिवस समारोह आयोजित करेगा। प्रधानमंत्री मोदी कोलकाता में आज INS दोनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोत में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा के दौरान ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

के दौरान ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनः परीक्षा आज आयोजित की जाएगी। ये पुनः परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। इन पुनः परीक्षा में 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। नीट यूजी 2026 पुनः परीक्षा आज संयुक्त अरब अमीरात में 3 निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज राजस्थान के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान श्री वैष्णव राज्य में यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और रेल संपर्क को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि 3 भारतीय ध्वज वाहक टैंकर सफलतापूर्वक हॉर्मूज जल डमरू मध्य को पार कर चुके हैं और भारत आ रहे हैं। इनमें 86,00,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। इन टैंकर में 94 भारतीय चालक दल के सदस्य भी सवार हैं। ये तेल टैंकर देश वैभव, देश विभोर और सनमार हेराल्ड हैं। फीफा विश्व कप के ग्रुप ई में जर्मनी और आइवरी कोस्ट के बीच मैच कनाडा के टोरंटो स्थित बीएमओ फील्ड में चल रहा है। अब से कुछ देर पहले ग्रुप एफ के मैच में नीदरलैंड्स ने स्वीडन को 5-1 से करारी शिकस्त दी। ये मैच अमेरिका के ह्यूस्टन में एनआरजी स्टेडियम में खेला गया। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 2 दिनों तक असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

लो भाई, साथ चलते चलते सुबह हो गई, 4:10 और ठीक 58 सेकंड हो गए, और ये पल बड़ा स्पेशल हो जाता है, बहुत ही ख़ास, क्योंकि अचानक से ऐसे लगता है कि नींद खुल गई, सुबह हो गई और शायद हम सच के आईने के सामने खड़े हैं। स्वागत है आपका आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पे।

हर बात में जिक्र हो जिसका, उसे ही मौसम कहते हैं। और जब मौसम को इशारों से बुलाने की बात हो, ये भला कैसे मुमकिन है। पर ये ज़रूर है कि हम इशारों इशारों में मौसम की बात करते करते बहुत कुछ सुन लेते हैं और बहुत कुछ कह जाते हैं। ये है अरुणिमा। सुबह के 4:16 और ठीक 30 सेकंड हो चुके हैं हमारे स्टूडियो की घड़ी में आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे।

लो फिर आपने बुलाया, हम आ गए आकाशवाणी दिल्ली की एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पे, लेकर के आए हैं हम आपके लिए अरुणिमा। और जहां तक बात है इस सौदे की, तो सौदा

कुछ बातों का तो होता ही नहीं, क्योंकि कुछ चीज़ें हमें अपने प्रयास से मिलती हैं और कुछ चीज़ें हमें बस ऊपर वाला दे देता है। कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं और बिना कोई वादा किए चले भी जाते हैं। न कोई शर्त है, न कोई हिसाब किताब है, है तो सिर्फ और सिर्फ एक एहसास है जो हर दूरी हर खामोशी के बाद भी वैसा ही रहता है, जो हर वक्त पास रहे ये ज़रूरी नहीं उसकी याद भी हमारे साथ रहे। लेकिन सौदे की जब बात आती है तो कुछ बातों का सौदा हो ही नहीं सकता। कुछ रिश्ते तो बस दिल से निभाए जाते हैं, चाहे लोग साथ रहें या फिर ना रहें, उनकी अहमियत कभी भी कम नहीं होती है। है ना, आपके साथ भी ऐसा कुछ कभी कभी तो ये ख्याल आता ही होगा दिमाग में।

हाँ वो एक तारा जो सबसे चमकीला है, हाँ वो एक तारा जो हमें सबसे ज्यादा अपने पास लगता है। ऐसा लगता है कि शायद हम उस तारे को हाथ बढ़ा करके तोड़ तो नहीं लेंगे या फिर कम से कम छू तो लेंगे ही। हाँ हाँ वही एक तारा जो हमेशा हमारी नजर में बना रहता है। क्या कहेंगे आप उसे? कुछ चीजें कुछ बातें हमें सिर्फ अच्छी लगती हैं, समझ में आए या फिर ना आए, लेकिन उन्हें समझ के या फिर उन्हें महसूस करके अच्छी फीलिंग आती है और लगता है कि

और उस सुनहरी शाम की याद अभी तक है, है ना। और जब हमारा वो जो जिसको कहते हैं ना, हमने अपने एक आशिया बनाया है, आशिया बनाते हैं, उसमें हम बसते हैं और उसके बाद फिर बुलाते हैं और सबको बुलाते हैं। कई बार लगता है कि इतने सारे मेहमानों में कहीं जिंदगी रह तो नहीं गई, और उसके बाद फिर हम जिंदगी को बुलाना शुरू करते हैं कि जिंदगी तुम मेरे घर आओ, खुशी तुम मेरे घर आओ और समय तुम भी मेरे घर आओ। और कुछ चीज़ें जिसका इंतज़ार हमेशा हम करते रहते हैं, और जो आवाज़ें हैं वो ठीक इस गाने की तरह होती हैं।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं, या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

लो भाई, मौसम की सरगम शुरू हो गई। इसे कहते हैं कि रात खत्म हो गई, चांद धीरे धीरे ओझल हो गया, तारों ने अपनी महफिल समेट ली। खिड़की से आती सुबह की पहली किरण ने एक नया संदेश दिया है कि भाई उठो, सुबह हो गई। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पे अरुणिमा। और जहाँ तक रही बात की, तो भाई बात तो जब निकलेगी तो फिर सुबह तो क्या, काफ़ी दूर तलक जाएगी।

न जाने कितने लोगों ने अपने अलार्म को फिर से बंद कर दिया होगा, न जाने कितने लोगों की नींद खुल गई होगी ये देखने के लिए कि भाई अभी तक अलार्म बजा क्यों नहीं। रात ख़त्म हो गई, सुबह हो गई, लेकिन अब भी हम आखिर क्यों ऐसे थोड़े से अनमने से हैं, थोड़े से अटपटे से हैं और थोड़े जागे थोड़े सोए से हैं। और ये सारे की सारी चीज़ें हमें यही एहसास दिलाती हैं कि हाँ हम हैं, हम हैं कि चलो उठो, हम हैं कि चलो फिर से शुरू हो जाओ, एक नई उम्मीद के साथ, एक नए वादे के साथ और एक नए दिन के साथ। हम हैं तभी तो इस बात का विश्वास है कि सब ठीक हो जाएगा। हम हैं इस वक्त आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पे 100.1 में।

न जाने क्या ऐसा है अंधेरे में, और न जाने क्या ऐसा है उस अंधेरे को चीर कर आती हुई रोशनी में, कि अपने आप हर चीज़ एक नई उम्मीद के साथ बहने लगती है, हर बात कुछ अलग सी लगने लगती है, और कैसी भी रात जाए जो दिन आता है वो नया सा लगने लगता है। इसे कहते हैं नेचर का जादू, और ये जादू हम सब के साथ चलता है, और हर दिन का हम इसी तरह से स्वागत करते हुए आगे बढ़ते हैं।

संभालिए क्योंकि आज का जो दिन है ना वो बहुत खास है। आज का दिन अगर आप किताबों में जाएंगे, अगर आप पढ़ के देखना चाहेंगे तो भी आपको लगेगा कि कुछ तो स्पेशल है, नहीं तो फिर मैं हूँ ना आपको बताऊंगी, सिर्फ और सिर्फ यहीं पे आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पे आपका हमारा साथ ऐसे ही बना रहेगा। और कोई दिन कैसे खास बनता है उसकी कई सारी हमारे पास उसके आइडियाज़ होते रहते हैं, और आज का दिन खास है सुबह जल्दी उठने के लिए। कभी कभी संडे थोड़ा अलग हो जाता है, कभी कभी संडे कहता है कि आराम करो, लेकिन आज संडे कहता है नहीं, उठो चलो कहीं चलते हैं योग करने के लिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। बारहवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज विश्व भर में मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। आज मुख्य कार्यक्रम कोलकाता में आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहर के रेड रोड पर आयोजित सामूहिक योग सत्र में शामिल होंगे। कार्यक्रम ठीक इसी समय शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री सुबह 6:30 बजे से 7:50 तक कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर भारत के 3 जहाजों INS दूनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रे को नौसेना में शामिल करेंगे। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा आज आयोजित की जा रही है। परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। इसमें 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने कल राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल का आयोजन किया। एजेंसी ने कहा कि वो परीक्षा के सुचारू, निष्पक्ष और पारदर्शी संचालन के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने ओडिशा में मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर

जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज राजस्थान के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। वे राज्य में कई महत्वपूर्ण रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। श्री वैष्णव बीकानेर रेलवे स्टेशन से लालगढ़ साबरमती एक्सप्रेस को झंडी दिखाएंगे। इसके बाद वे जयपुर में

0: इसके बाद वे जयपुर में खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। श्री वैष्णव उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा विकसित कई अवसंरचना परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारतीय ध्वज वाले तीन टैंकर सफलतापूर्वक हॉर्मुज जल डमरू मध्य को पार कर भारत आ रहे हैं। इनमें 86 लाख मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। टैंकर देश वैभव, देश विभोर और सनमार हेराल्ड पर 94 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार हैं। श्री सोनोवाल ने सोशल मीडिया पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार भारत के समुद्री हितों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। भारत ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की अनुचित टिप्पणियों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। श्री जायसवाल ने कहा कि मानवाधिकारों के मामले में पाकिस्तान के दयनीय रिकॉर्ड को देखते हुए ये टिप्पणियां विशेष रूप से बेतुकी हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वर्तमान विश्व व्यवस्था की अनिश्चितताओं के बीच मजबूत तैयारी बनाए रखना आवश्यक है। श्री सिंह ने मेघालय के शिलांग स्थित पूर्वी वायु कमान मुख्यालय में सैनिकों से बातचीत करते हुए तकनीकी दक्षता, रणनीतिक दूरदर्शिता और संस्थागत नवाचार की आवश्यकता पर बल दिया। प्रसिद्ध मलयालम कवि और साहित्यकार पद्मश्री पी नारायण कुरूप का कल रात केरलम में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, बिहार, ओडिशा, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, रायलसीमा, कराईकल, केरलम और माह में मंगलवार तक तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। The 12th International Day of Yoga, IDY 2026, is being celebrated today with the theme Yoga for Healthy Aging. The main event is being held at the historic Red Road in Kolkata in West Bengal, where Prime Minister Narendra Modi is leading the nation in the practice of the common yoga protocol. We have a report.
2: The Ministry of Culture is organizing a special yoga celebrations across 100 iconic locations in the country, connecting India's rich cultural heritage, historical landmarks and yoga traditions. As part of this initiative, major celebrations will be held at 12 prominent locations, including Red Fort in New Delhi, Haridwar in Uttarakhand, Konark in Odisha, Hampi in Karnataka, Mahabalipuram in Tamil Nadu, Mumbai in Maharashtra, Nalanda in Bihar, Ahmedabad in Gujarat, Sarnath in Uttar Pradesh, Leh in Ladakh, Hyderabad in Telangana and Silchar in Assam. In coordination with the Indian Council for Cultural Relations, more than 210 Indian missions abroad will organize yoga events at nearly 2,500 locations across the world. In Delhi, yoga celebrations are being organized at prominent public locations including Lawn of Shantipath, Kartavya Path, New Moti Bagh, CP Central Park, Talkatora Garden and Yamuna Sports Complex. Anand Kumar, Akashwani News, Delhi.
1: President Draupadi Murmu will be the chief guest at the state-level International Yoga Day program in Jabalpur, Madhya Pradesh today. The event will begin at 7:30 a.m. at Garrison Ground in Sadar. After the Yoga Day event, the president will reach Rani Durgavati University, where she will attend the university's 36th convocation ceremony as the chief guest. Ministry of Social Justice and Empowerment will organize a special Yoga Day celebration at Bharat Mandapam in New Delhi today. As part of the nationwide celebrations of the 12th International Day of Yoga, IDY 2026, the event is expected to bring together nearly 1,500 senior citizens. The celebration is being organized in alignment with the national theme of the day, Yoga for Healthy Aging. Meanwhile, in view of the celebrations of International Day of Yoga in the national capital, Delhi Metro services has commenced at 4 a.m. today from its originating stations. The Delhi Metro Rail Corporation said that the train services will be available at an interval of 30 minutes till 6 a.m. Prime Minister Narendra Modi will commission

दिन है सुहाना मस्ताना, ये तो मैंने गानों के द्वारा आपको बता दिया, लेकिन इस दिन की खासियत बहुत सारी है। ये माना कि आज है संडे और आपको उठना था थोड़ा लेट, लेकिन कभी कभी संडे थोड़े अलग रूप में आता है। वैसे मैं आपको बताऊं कि 21 जून केवल साल का लंबा सबसे लंबा दिन नहीं होता, बल्कि इस दिन के और भी कई सारे इम्पॉर्टेंस हैं जो मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल तो हम आपको यही कहेंगे कि इस शो में हम भोर सुहानी में आपको यही संदेश देना चाहते हैं कि भाई ये दिन आज आपका बहुत ही ख़ास बीतने वाला है, ये हमें पक्की तरह से पता है। बस थोड़ी सी आपको, जिसको कहना चाहिए ना कि मेहनत नहीं, थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ेगी और कुछ नहीं।

गीत प्यार का आप गा सकते हैं। जी हाँ, गीत प्यार का आप गा सकते हैं। और आज की अगर हम बात करें तो आज ये सबसे लंबा दिन माना जाता है, बल्कि सूर्य की जो विशेष ऊर्जा और प्रकृति के बदलाव का प्रतीक भी माना जाता है। ज्योतिषीय दृष्टि से ये दिन हम कहेंगे कि आत्मविश्वास से भरपूर है, पॉजिटिविटी इसके अंदर भरी हुई है और स्पिरिचुअली भी ये बहुत उन्नति के साथ जुड़ा हुआ है। सूर्य की ऊर्जा के साथ जुड़कर हम सब अपने जीवन में एक नई प्रेरणा और संतुलन हो सकता है महसूस करें अगर हम योग करें। जी हाँ, आप सबको बहुत बहुत बधाई इंटरनेशनल योगा डे।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, जिसका जोश, जिसका जुनून बहुत सारे लोगों के पास है इस वक्त, मैं इस बात को महसूस कर सकती हूँ। और कई सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपने जितने भी जानने वाले हैं सबको भोर सुहानी में ये ज़रूर कहा होगा कि भाई आज तो हमें जल्दी उठना है। और इस जो बहुत बड़ा एक ये कहा जाए कि ये योग दिवस है, इसमें पार्टिसिपेट करना है, और बहुत सारे लोगों ने इसकी शुरुआत कर भी दी है। तो हम सबको यही कहना चाहते हैं कि इस नए जोश, इस नए रंग के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। और जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो लोग भी आएं, पार्टिसिपेट करें और देखें कि कैसे

और इस सुहाने मौसम की जब बात हुई है तो हम आपको बता दें कि आज का मौसम कुछ बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जहां पे तेज़ गर्मी हो सकती है, उमस हो सकती है और कुछ ऐसी जगहें जहां पे गरज के साथ हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। देश के अलग अलग राज्यों में मौसम का हाल अलग अलग है, ये आप जानते हैं। अगर हम दिल्ली और दिल्ली NCR की बात करें तो तेज़ धूप और उमस रहेगी दिन में, लेकिन अभी मौसम बहुत सुहाना है, इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता। हाँ, शाम को थोड़ी सी हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, ऐसी उम्मीद की जा रही है।